जाना कभी ऐसा न था।

0: ऐ मेरी हमरख्त मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: जिंदगी की असली लग्जरी क्या होती है? नहीं, ब्रांडेड घड़ियां, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड बैग्स से और भी बढ़कर बहुत सी चीजें होती है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आफरीन एंड यू आर लिसनिंग 29.6 मिर्ची 1। और जिंदगी की असली लग्जरीज की अगर हम बात करें तो वो मटीरियलिस्टिक चीजों में कहाँ होती है यार। मतलब मुझे अगर कोई पूछे मेरे लिए असली लग्जरी क्या है, तो डेफिनेटली वो धीमी शुरू होने वाली मॉर्निंग्स, वो रात की सुकून वाली नींद, एक अच्छी सी कॉन्वर्सेशन, या फिर वो दिन में वो वक्त मिले जहां पर आपको छोटे छोटे नैप्स लेने का मौका मिले। अब ये सारी चीजें आजकल लग्जरी में नहीं आती तो कहां आती, क्योंकि ये काफी ज्यादा रेयर है और हर एक इंसान के पास नहीं होती है। ये जो सुख सुविधाएं जो कहते हैं हम इसे, ये कहाँ होती है सबके पास यार? ये अब लग्जरी में काउंट होने लगी है। एक बार हम ये सोच सकते हैं कि यार महंगी चीजें, महंगे बैग्स, घड़ियां, ये सारी चीजें आपको सबके पास मिल जाएगी और ये आम हो गया अब तो। यार लग्जरीज का डेफिनेशन अब चेंज करते हुए हमें फोकस कहीं और बढ़ाना चाहिए। फिलहाल आपका फोकस जैसे मैंने मेरी बातों में पकड़ लिया है, बस उसी तरह से पकड़े रखना चाहूंगी और शो को आगे बढ़ाऊंगी। मैं यानी आरजे आफरीन, वेरी गुड मॉर्निंग। और शो को आगे बढ़ाते हुए अगला गाना अरिजीत सिंह की आवाज में आपका दिन बिल्कुल खूबसूरत बनाएगा। राइट हियर राइट नाउ 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. Na vietva la burga. Mirci, burga.
1: हेलो
2: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
1: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
2: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
1: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
2: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
1: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
2: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
1: मैं तो बालकनी में खड़ा, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
2: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी चौड़ी तो रोड होगी।
1: कौन कौन आ सकते, किसकी जिप्सी?
2: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
1: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
2: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
1: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
2: आगे वो भी आ गए। एक मिनट होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
1: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
2: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आप पहला रहा हूँ,
1: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
2: किसकी डेथ हो गई सर?
1: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
2: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स का फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
1: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसे हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ पर रहे हो?
2: मैं कहाँ पर हूँ,
1: सॉरी आप अभी कहाँ पर हो?
2: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
1: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, परेशान हूँ मैं।
2: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
1: यार।
2: थैंक यू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
5: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको कोई धोखा दे रहा है, बात कुछ और है। वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची। और होता है अक्सर कि आप गाड़ी चला रहे हो और आपको महसूस तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तकरीबन 45 के ऊपर या तकरीबन 50 तक, लेकिन आपकी जो गाड़ी है वहां पर तो 42-43 यही दिखा रहा है। ये कोई धोखा नहीं दे रहा है, वो इस वजह से है क्योंकि अल मरजाम, ये सुना है आपने? हाँ, ये जो सीजन है ये शुरू हो चुका है जहां पर ह्यूमिडिटी इन कतर इज एट इट्स पीक। तो बस ये कुछ सिलसिला ना एक महीने तक चलता रहेगा जहां पर बहुत पसीने आने वाले हैं आपके, भले ही वेदर जो है इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं दिखा रहा होगा। जैसे आज का ही टेम्परेचर देख लो।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: वेदर अपडेट। देखो वेदर आज का ये कह रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 43 पर रहेगा और मिनिमम जो है 34 पर रहेगा, लेकिन जो महसूस कर रहे हो आप तकरीबन 48 के करीब ऐसा कुछ महसूस कर रहे हो बिकॉज ऑफ दिस अल मरजम, उस वजह से ही ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है हवा में और आपके पसीने छूट रहे हो और आपको गर्मी हो रही है। लेकिन कोई ना, वो कहते हैं ना हर रात के बाद सवेरा आता है और हर अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर सब कुछ आता है, जिसकी वजह से आपको अब ठंडी के मौसम भी जल्दी जल्द जल्द से जल्द मिलने वाले हैं। सो ऑल इन ऑल गाने सुनते रहिएगा आपके, सो ऑल इन ऑल मजे के गाने आपके लिए लाइंड अप है राइट हियर, जो आपको गर्मी में भी ठंडी का एहसास दे। और मुझे इट्स हॉट
2: अरे यार कोई एसी चला दो यार।
3: सही है सही है।

0: देखो जिसने भी कहा है ना कि शॉपिंग एक थेरेपी होती है, बिल्कुल सही कहा है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफरीन का साथ है राइट अराउंड मिर्ची मॉर्निंग। सब देखिए भाई, शॉपिंग करने से इतना सुकून मिलता है ना। हाँ, थोड़े से जो है आपकी पॉकेट जल जाती है, लेकिन यार सही में दिल को बड़ी ठंडक मिलती है और बड़े मजा आता है। एंड शॉपिंग में समझो अगर आप कपड़े लेने जाओ और घर कार लेकर आओ तो भाई और क्या ही चाहिए, स्पेशली तब जब आप यहाँ पर समर्स में ना आउटडोर्स घूम नहीं सकते हो ना, तो बस इस तरह से समर शॉपिंग फेस्टिवल का मजा तो जरूर उठा सकते हो। वेल शॉपिंग फेस्टिवल ये 1st अगस्त से लेकर 31st अगस्त तक चलने वाला है, एक महीने का जबरदस्त ये जो है फेस्टिवल जहां पर शॉपिंग और डाइनिंग एक्टिवेशन है। देखिए यहां पर रेसिडेंट्स और विजिटर्स देखिए लुक फॉरवर्ड टू एक्सक्लूसिव प्रमोशंस, सेट मेन्यूज, वैल्यू एडेड एक्सपीरियंस, मतलब पूरे कतर में हर जगह भले आप खाने के लिए जाइए या शॉपिंग के लिए जाइए। अच्छा मजे की बात तो ये भी है दैट यहां पर 4 मेजर रैफल ड्रॉज होने वाले हैं विच इंक्लूड्स 5 कार्स, और इसमें आपको मौका मिलेगा ना भाई कि भाई कार भी जीत सकते हैं। देखिए ये जो पार्टिसिपेटिंग वेन्यूज है हाला समर शॉपिंग फेस्टिवल के वो है प्लेस वेंडम, दोहा फेस्टिवल सिटी, मॉल ऑफ कतर, विलेज यू सिटी सेंटर, लैंडमार्क दोहा मॉल, वेस्ट वॉक, और ऐसे कई सारे मॉल्स हमारे कतर में। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, चलो यार बैग उठाओ और जाइए शॉपिंग को और फायदा करके आइए। मैं हूँ आफरीन आपके साथ राइट ऑन मिर्च हॉट।
1: गुड़ वाली चाह किन पीती, बुआ जी का नाला किन खिंचया।

0: in association with Dairy Queen. Beat the heat with Oreo Strawberry Choco Blizzard at Dairy Queen. And Papa John's. Enjoy Double Delight offer. Two small pizzas at 44. Two medium pizzas at 66. Two large pizzas at 99 Rial. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Restaurant partner, Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues today. Printing and advertising partner, Brand Arts.
2: Visual media partner, Rehab Media.
1: Production partner, Symphony.
3: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं। जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
4: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6
6: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

वेल, अगर आपके घर में या आपके जान पहचान में 12 से 18 साल का कोई टीनेजर है तो आज की जो इन्फॉर्मेशन है ये एक अनाउंसमेंट नहीं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी जैसी नजर आएगी अगर वो मेडिकल फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो। वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और कतर के PHCC के समर प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन जो है वो खुल चुकी है। 12 से 18 साल के स्टूडेंट्स, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट के हो, सिटीजन्स हो या रेसिडेंट्स हो, सारे अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, ये कोई क्लासरूम लेक्चर नहीं है, दिस इज रियल हेल्थ सेंटर्स के अंदर प्रैक्टिकल एक्सपोज। वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और कतर के PHCC के समर प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन जो है वो खुल चुकी है। 12 से 18 साल के स्टूडेंट्स, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट के हो, सिटीजन्स हो या रेसिडेंट्स हो, सारे अप्लाई

जो वेनसडे मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट के ऑप्शंस के साथ है, सो आप सिलेक्ट कर सकते हो. बट मेनली इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो PHCC का ऑफिशियल पेज है, यहाँ पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. सो अगर ऐसा कोई आपका बेटा है, बेटी है, या फिर कोई जानने वाला है जो फ्यूचर में डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, लैब साइंटिस्ट या हेल्थ केयर मैनेजमेंट में ही क्यों ना जाना चाहता हो, सो दिस समर वेकेशन बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो वो बिल्कुल ग्रैब कर सकते हैं. मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट ऑन मिर्ची इट्स हार्ट.

0: हेलो शॉप्स, आप प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
1: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
0: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
2: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
0: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
3: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
4: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: क्या बताओ यार, कंपनी इतनी टॉक्सिक हो गई है मेरी। टीम से सब लोग एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। अब मैं अकेला ही बच गया हूँ, क्या करूँ?
1: अरे मामू, तो तू छोड़ देना तो कंपनी से क्या टॉक्सिसिटी चली जाएगी।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

अच्छा सोचिए, अगर आप कल सुबह उठ जाए और दुनिया से सारे रंग गायब हो जाए तो? यानी जो रेनबो है वो सफेद और ग्रे हो, पेड़ों का हरा भरा रंग ही ना हो, लाल गुलाब बस एक प्लेन फूल लगे, सनसेट में ये ऑरेंजिश येलोइश कलर ही ना हो, बिल्कुल फीका सा आसमान हो, कितनी बेरंग लगने लगेगी ना जिंदगी। तो बस सच तो ये है कि हम कलर्स को सिर्फ देखते नहीं, फील भी करते हैं, है ना। ग्रीन हमें सुकून देता है, ब्लू शांति का एहसास, और येलो जो है ना वो खुशी का एहसास देता है। कलर्स ना हमारी इमोशन की लैंग्वेज जरूर है, और इसी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल दिया है कलर वर्स ने, जो अब कतारा कल्चरल विलेज में है। ये ओपन हो चुका है और यहाँ कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसी दुनिया जहाँ से रंग खो गए हैं और विजिटर्स उन कलर्स को वापस लाने की जर्नी का हिस्सा बन जाते हैं। हाउ इंटरेस्टिंग, नहीं? एंड ये सिर्फ ना बच्चों के लिए नहीं है, आई एम श्योर ऑल द पेरेंट्स आउट देयर विल आल्सो एंजॉय दिस थिंग, क्योंकि यहाँ पर 7 इमर्सिव ज़ोन्स है, इंटरैक्टिव गेम्स है, लाइव परफॉर्मेंसेस है, सरप्राइज कैरेक्टर्स है। तो यार बच्चों के तो मजे ही मजे, लेकिन एडल्ट्स भी अपने इनर चाइल्ड को जरूर डिस्कवर करेंगे। अगर आप अपनी फैमिली आउटिंग प्लान कर रहे हैं तो दिस इज वन मोर ऑप्शन यू हैव, दैट इज कलर वर्स हैपनिंग एट कतारा कल्चरल विलेज। माइक से दिल तक आप ट्रीन के साथ बने रहिएगा और मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rambala. Burga, burga. Na vjetva la burga.
1: Mirci, burga.
2: Hello,
1: Mr. Gotham.
2: कौन बोल रहे हैं
1: सर? मैं एक्चुअली आज सर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं सर आप सुना है वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
2: ऐसा कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
1: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक कहीं घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
2: हाँ, सर कुछ गाके सुनाएगा।
1: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
2: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको भेज दो।
1: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
2: कौन से गाने
1: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ। तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे कहाँ खाएगा?
2: सुन ले बात, और बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
1: है। सर बोलिए,
2: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
1: जी सर।
2: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
3: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका।

0: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
1: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
2: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
3: कम है के?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
6: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

देखो वैसे तो मैं अगले वीकेंड तक यानी वीकेंड पर आने वाले इवेंट्स की बातें करती हूँ, लेकिन अब लेकर आई हूँ कि यार बचे हुए साल में क्या कुछ होने वाला है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और देखिए भाई, अब तो ऑलमोस्ट हमारा आधे साल से ज्यादा खत्म हो चुका है, और जब रेस्ट ऑफ द ईयर बचा है, कौन से ऐसे मेजर इवेंट्स हैं जो आप लुक फॉरवर्ड कर सकते हो? जैसे शैल कथारा हंटिंग एंड फाल्कन एग्जीबिशन, ये सितंबर के महीने में होने वाला है, और सितंबर के महीने में ही दोहा ज्वेलरी एंड वॉचेस एग्जीबिशन होने वाला है। और जनरली ना ये वाले इवेंट है तो ज्वेलरी एंड वॉचेस एग्जीबिशन, बॉलीवुड के कोई बड़ा स्टार आता ही आता है। करीना कपूर आ चुकी है, आलिया आ चुके हैं, ऐश्वर्या राय है, इस बार देखते हैं कोई आता है या नहीं। उसके अलावा अगर बात करें बड़े बड़े इवेंट्स में हमारे कतर की, तो कतर बोट शो भी नवंबर में लाइंड अप है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वन इवेंट आई थिंक सो एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड इज शकीरा का कॉन्सर्ट। ये एक्चुअली स्टेडियम 974 में होने वाला है 18th ऑफ नवंबर को। एंड फॉर ऑल द स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट, भाई फुटबॉल के बगैर हमारा साल तो इनकम्प्लीट सा ही रहेगा, राइट? तो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप वो भी होने वाला है नवंबर 19 से लेकर 13th of December तक। And then F1 Qatar Airways Grand Prix, ये भी तो होने वाला है November में। So you know यार, बहुत सारी चीजें lined up है, और December के महीने तक तो मैं आई भी नहीं हूँ। Qatar Balloon Festival वो भी होने वाला है, Qatar T100 Trialthon भी होने वाला है, और Doha Forum 2026। So all you I can say is भाई साल अब तक खत्म कहाँ हुआ है, अब तो यार शुरू ही हुआ है। इवेंट्स का सिलसिला तो यहाँ पर अब बाकी है मेरे दोस्त, लेकिन अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Dairy Queen and Papa John's. Enjoy double delight offer. Two small pizzas at 44. Two medium pizzas at 66. Two large pizzas at 99 Rial. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Restaurant partner, Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues today. Printing and advertising partner, Brand Arts.
2: Visual media partner, Rehab Media.
1: Production partner, Symphony.
3: अरे यार, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
4: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से।
3: योर स्पेशल ऑफर?
4: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है। ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट्स जो मुझे एक्चुअली चाहिए।
3: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
4: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है।
3: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट। क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

देखिए क्या करें, बच्चे हैं, जी थोड़ी भरेगा। जब इतना मजेदार इवेंट जो पिछले एक महीने से लगभग चल रहा हो और फिर भी ये बच्चे क्या यार, बड़ों का भी जी नहीं भरे, तो एक्सटेंड तो करना पड़ेगा ही ना। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और ऐसे ही कुछ होने वाला है कतर टॉय फेस्टिवल के साथ। देखिए भाई, ऑर्गेनाइज बाय कतर कैलेंडर इन कोलैबोरेशन विद स्पेस टून ग्रुप, ये फेस्टिवल अब एक्सटेंड हो गया है अंटिल 4th of August। यस, अगर आप सोच रहे हैं कि अभी तक हम गए नहीं और जाने की कोशिश भी हमने की थी लेकिन वो क्या है ना, अवेलेबल नहीं था, स्लॉट्स बुक थे, तो फटाफट से आज जाइए और 4th, 3rd जो भी स्लॉट अवेलेबल है उसका स्लॉट बुक कर लीजिए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जो बच्चे क्या बड़े भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इतने सारे टॉय ब्रांड्स हैं वहाँ पर और मतलब 50-70 रियाल्स में पूरा एक पैकेज मिल जाता है। 3-4 घंटे बच्चे तो मज़ेदार तरीके से एंटरटेन हो ही जाते हैं, साथ ही साथ आप भी जाते हो। मैं हूं आफरीन आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: हाल ही में रवि किशन ने जो होम फ्रॉम वर्क की बात छेड़ी है, मुझे ऐसा लगता है कि रवि किशन जेन्युइनली एक फनी इंसान है। तृप्ति डिमरी, आपको क्या लगता है?
3: He is just too funny. Like whatever he says, it's funny. He's कुछ लोग होते हैं ना जिनमें ह्यूमर इनबिल्ट होता है। I think he is one of those people.
2: Tripti Dimri spilling some truth bombs on Mirchi. It's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: हाल ही में रवि किशन ने जो होम फ्रॉम वर्क की बात छेड़ी है, मुझे ऐसा लगता है कि रवि किशन जेन्युइनली एक फनी इंसान है। तृप्ति डिमरी, आपको क्या लगता है?
3: He is just too funny. Like whatever he says, it's funny. He's कुछ लोग होते हैं ना जिनमें ह्यूमर इनबिल्ट होता है। I think he is one of those people.
2: तृप्ति डिमरी spilling some truth.

0: बसंतीन कुत्तों के सामने मत नाचना।
1: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
2: कैसे रुक सकता है?
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
3: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

देखो कहते हैं कि ना बहुत चीजों को ना आप अंडर एस्टिमेट कर देते हो। देखिए बेस्ट एग्जांपल तो कतर नेशनल लाइब्रेरी ही है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और कतर नेशनल लाइब्रेरी को जो हम सिर्फ किताबों के लिए जानते हैं, ये उससे कहीं ज्यादा है। अंडर एस्टिमेट कर रहे हो आप, क्योंकि देखिए अब QNL ने अगस्त का एकदम डिफरेंट लीग बताया है, उसमें खेल रहे हैं ये देखा जाए तो। क्योंकि सिर्फ बुक्स ही नहीं, यहाँ स्टार्टअप वर्कशॉप, AI सेशंस, आर्ट गैदरिंग्स, चेस मीटअप्स, फैमिली स्टोरी टेलिंग, स्टेम कैंप्स और बच्चों के लिए समर लाइब्रेरी कैंप तक, मतलब पूरा मंथ लर्निंग का फेस्टिवल बन गया है। एंड बहुत मजे की बात है ना, ऐसे वक्त पर जब बच्चे घर पर है, छुट्टियां चल रही है, तो पूरी तरह से दे कैन ऑप्टिमाइज देयर टाइम एंड इनफैक्ट यूटिलाइज

इज दी ऑल दी फैसिलिटीज ऑफ QNL दैट इज कतर नेशनल लाइब्रेरी. तो अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, AI समझना चाहते हैं, बच्चों को स्क्रीन से थोड़ा हटाकर बस मीनिंगफुल एक्टिविटीज ही देनी है, देन QNL इज द प्लेस. मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट हियर ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
2: मेरी ऑफिस में मेरे से बेवकूफ लोगों को ज्यादा सैलरी मिलती है, क्या करूँ?
1: ओ माय बॉय, तो तू ये सोच कि असली बेवकूफ कौन हुआ?
3: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: देखो, क्या आप भी उन्हीं में से हो कि बिजनेस तो शुरू करना है लेकिन पेपर वर्क का ये जो जंगल है ये क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है? कभी फॉर्म्स होते हैं, कभी अप्रूवल्स होते हैं, और इसी कंफ्यूजन को सिंप्लीफाई करने के लिए कतर ने एक इंटरेस्टिंग स्टेप लिया है।
1: क्या खबर कतर?
0: खबर ऐसी है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बिजनेस गाइडेंस एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफिस लॉन्च किया है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, स्टार्टअप का प्लान बना रहे हैं या अपनी कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं तो ये ऑफिस आपको पूरे प्रोसेस में गाइड करेगा। कंपनी कैसे एस्टैब्लिश करनी है, किस सर्विस के लिए कहां जाना है और किस तरह से पेपर वर्क कंप्लीट होगा, सब एक ही जगह पर समझाया जाएगा। ये ऑफिस लुसेल में मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर्स पर संडे से लेकर थर्सडे सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक ओपन रहेगा। तो अगर आप या आप में से ऐसा कोई है, कोई दोस्त है जिसके दिमाग में बिजनेस शुरू करने का आइडिया तो है लेकिन कहां से शुरू करना है, कैसे करना है, सो दिस इज द प्लेस। मैं हूं आफरीन आपके साथ, माइक से दिल तक राइट यू ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na wird bala burka. Milci burka.
1: Hallo.
2: Hallo.
1: Hallo.
2: Hallo, Benji.
1: Hanji.
2: Ye, ek second. ये बहन जी, हम आपके पड़ोस में रहते हैं। ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है। वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है। अगर
1: आप, आपके घर में कोई नहीं है क्या?
2: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं। तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो एक सेकंड बेटी। चुप,
1: आप अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए जल्दी।
2: नहीं नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ। एक सेकंड। आली है मामा आएंगी, मामा आएंगी। एक सेकंड बहन जी, आप होल्ड करेंगी? एक सेकंड सर। आएंगी मामा, आएंगी, चीजी लाएंगी बेटू, चीजी लाएंगी। नहीं, चुप हो रहा है। आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे।
1: नहीं, इसमें डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है।
2: एक सेकंड, इधर आओ। हाँ, इधर आओ। देखो, मामा आ गई, चीजी लाई। हाँ, डायपर गीला है बहन जी इसका,
1: उतार लीजिए उसको।
2: एक सेकंड रुकिए। ये इसके गले में अटक रहा है डायपर। एक सेकंड,
1: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका।
2: अच्छा, ये बेब है। एक सेकंड,
1: देखिए सुसु करा होगा उसने। देखिए,
2: हाँ, सुसु करा। चुप,
1: उतार दीजिए।
2: एक सेकंड, उतार दिया। मैं जी, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ आए जरा। देखो आंटी कर रही है। क्लैपिंग करो।
1: चुप हो जाओ, पेट दर्द वगैरह ना हो, आप इसको डॉक्टर के पास लेकर जाइए।
2: हाँ, मुझे भी वही याद आ रहा है। नहीं बहन जी, आप सही कह रही हैं। रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था, जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया।
1: और मैं पागल हूँ। ओह नो।
2: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned.
5: The mentalist Suhani Shah.

0: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
1: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
2: दोनों मिलेगा। का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: देखो मुझे पता है ना, ये वीकेंड ना बोर होने का स्कोप ही नहीं है आपको। अजी आफरीन, हम तो घर पर ही हैं, हम कहीं नहीं जा रहे, कुछ नहीं कर रहे, इसलिए तो कह रही हो भाई घर पर भी हो तो फिर बोर नहीं हो सकते हो, क्योंकि OTT पर बहुत मजेदार चीजें आई हैं।
1: भाभी जी, एकदम लेटेस्ट डिजाइन है।
2: फ्रेश है भैया, फ्रेश है,
3: एकदम नया आया है।
4: अरे मार्केट में नया क्या है?
0: वेल, देखिए नया तो सबसे बेस्ट मुझे लग रहा है आउट ऑफ ऑल इज आदर्श बाल विद्यालय। इट्स अ हार्ट वार्मिंग हिंदी कॉमेडी ड्रामा। और ये किसने क्रिएट किया पता है? बिस्वपति सरकार और समीर सक्सेना। बिस्वपति सरकार वही है जो TVF में बहुत सारी सीरीज और बहुत सारी चीजों में इन्होंने काम किया है। और इसमें द स्टार ऑफ द शो आई वुड से इज KK मेनन एज एक्सेंट्रिक हेडमास्टर ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, हु लीड्स अ क्वर्की ग्रुप ऑफ टीचर्स ऑन अ मिशन टू ट्रांसफॉर्म अ फेलिंग दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल। और बस इसी पूरे चक्कर में यहाँ पर बहुत सारी कॉमेडी चीजें होती है, लेकिन साथ ही साथ ना ये पूरा सीरीज ना प्रीची भी नहीं लगता है, मॉरल वैल्यूज भी देता है, कॉमेडी भी करता है, एंड आई थिंक सो इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड। और ऐसे सीरीज ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेन रीजन कि आप ना बच्चों के साथ देखते हो और OTT पर ऐसे चीजें ना बहुत कम ही आती है। सो वेल, Amazon Prime पर वैसे ये स्ट्रीम हो रहा है आदर्श बाल विद्यालय। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर रोमांटिक मूड में हो दोस्तों, मुसाफिर कैफे, दिस इज अ हार्टफेल्ट रोमांटिक ड्रामा, ठीक है, नेटफ्लिक्स पर है ये। एंड ये जो है विक्रांत मासे, हु डजंट नो, ही डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, राइट? एक्टिंग तो बेहतरीन करते ही है। इनके साथ में आपको नजर आएंगे वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना। आई हैवंट सीन देम एक्चुअली दीज गर्ल्स, बट ठीक है, विक्रांत इज डूइंग, वो अपने पूरे कंधों पर ये सीरीज को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो बहुत ही प्यारी सी कहानी है, चंदर की कहानी है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और जिसका सपना है कि राइटर बने, और फिर उसका बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप होता है सुधा के साथ, और उसके बाद में वो पहाड़ों में जाकर अपना एक कैफे सेटअप करता है जहाँ पर उसकी मुलाकात प्रीति से होती है, लव ट्राइंगल जैसे आप कह सकते हो, लेकिन एक नए अंदाज में। तो ये भी आप देख सकते हो ऑन नेटफ्लिक्स, मुसाफिर कैफे। फिलहाल के लिए तो दो चीजें ही मैंने आपको बताई है, लेकिन अगर और चीजें जानना चाहते हो तो मुझे जरूर व्हाट्सएप करो 5000186। अपन के पास लिस्ट है बॉस, है ना? यू गॉट टू स्टे ट्यून्ड विद मी, दैट इज माय सिग्नल तक आफरीन के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

Well, and that's why I call a colorful weekend. Boss, apna katar hai ye. There is never a dull moment here. Welcome back and very good morning. Aap sun rahe ho Simply Afreen ko. And jahan weekend ki baat kare aur events ki baat kare, bhai line lagi hai bahut sare events ki for kids, for family, sabhi ke liye. Jaise agar aap Suqwa ke waqif ki taraf ja rahe ho, Eastern Plaza, jahan Mango Festival bhi hua tha, ab wahan par local date festival chal raha hai. Well, isse bata do, ye 10th August tak chalne wala hai. Uske ilawa there is something very interesting. Ye color wars experience jo hai Katara mein jo chal raha hai, ye kuch pehli बार ऐसा आया है. इट्स एन इमर्सिव, कुछ तो इमेजिनरी, एक अलग ही एक्सपीरियंस है. यहां पर आपको जरूर जाना चाहिए. इनफैक्ट आई एम आल्सो प्लानिंग दिस वीकेंड और प्रोबेबली द वीकडे. कभी तो जाऊंगी और जब मैं जाकर आऊंगी आपको एकदम विस्तार में बताऊंगी. बट मीनवाइल यू शुड विजिट दिस विद किड्स. बड़े भी जा सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, मॉल ऑफ कतर जा रहे हो, वहां पर शॉपिंग करने का इरादा है, तो भाई इन टू द जंगल शो ये वहां पर चल रहा है ओएसिस स्टेज पर, जिसकी टाइमिंग्स है शाम के 5:30, 7 और रात के 8:30. तीन शोज होने वाले हैं हर रोज ये है. एंड ऑल्सो डिड यू नो दैट कतर टॉय फेस्टिवल, जिसकी धूम मची हुई है एक महीने से, वो भी एक्सटेंड हुआ है. यस, 4th August तक एक्सटेंड हुआ है, जो यही वीकेंड खत्म होने वाला था, अब थोड़ा और टाइम मिल गया है. एंड देखो बस, ऐसे ही उठ के मत जाओ वहां पर, क्योंकि वहां पर जाने से पहले आपको ऑनलाइन टिकट्स बुक कर दें, क्योंकि स्लॉट्स फुल हो जाते हैं तो ज्यादा बेहतर है. सो वेल, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई है जो कतर में इस वीकेंड हो रही है. वॉट इज योर पिक, लेट मी नो. 5000186 इज माई व्हाट्सएप नंबर. मीनवाइल अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है. माइक से दिल तक आफ्रीन के साथ बने रहिएगा. इट्स हॉट.

0: देखिए जिंदगी में हम सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ है कि हम सच्चे हैं, सीधे हैं, दिल से सोचते हैं, लेकिन फिर भी गलत समझ लिए जाते हैं। और ऐसे ही ख्याल पर मुझे आज मिर्जा गालिब की एक शेर याद आ रही है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: तो अर्ज किया है, न जाने कौन सी शिकायतों के हम शिकार हो गए, न जाने कौन सी शिकायतों के हम शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतने गुनहगार हो गए। देखिए होता है ऐसा कि यार अजीब सा हिसाब किताब होता है जिंदगी का। हम नीयत हमारी अच्छी होती है, बट कभी कभार ना कुछ लोग हमें गलत समझ लेते हैं। इसलिए आज ना इतना याद रखो, हर बात एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं होता, हर इल्जाम का जवाब देना भी जरूरी नहीं होता। कभी कभी खामोशी भी अपनी सफाई खुद लिख देती है। दिल साफ रखिए, नीयत साफ रखिए, बाकी दुनिया का शोर वक्त खुद धीरे धीरे कम कर देता है। बस इसी के साथ लेना चाहूंगी अलविदा, मिलूंगी कल फिर से, सेम टाइम सेम शो, नए जज्बात वही गाने, नए गाने दिल से दिल तक बातें, हर चीज राइट हियर ऑन द शो आफरीन के साथ ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: माधुरी जी, आप अपने ग्रेस, एलिगेंस, पॉइज, अदा, इन सब के लिए जानी जाती हैं। असली में माधुरी दीक्षित कौन है?
3: The elegance and this and that, everything inside is me is like a mad person. And I love mad comedies. And I love these kind of situations which are like larger than life. वो कुछ अजीब सा हो रहा है इनके साथ, अजीब से कैरेक्टर्स हैं सब, you know, सब पागल, unhinged kind of characters.
2: अब समझी, इसीलिए लोग प्यार से आपको मैड्स भी बुलाते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: शी कैन ऑलरेडी रीड व्हाट्स ऑन योर माइंड, शी नोज व्हाट यू आर थिंकिंग। कमिंग सून, स्टे ट्यून्ड, स्टे ट्यून्ड।
5: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव

0: Dairy Queen and Papa John's. Enjoy double delight offer. Two small pizzas at 44. Two medium pizzas at 66. Two large pizzas at 99 Rial. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Restaurant partner, Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues today. Printing and advertising partner, Brand Arts.
2: Visual media partner, Rehab Media.
1: Production partner, Symphony.
3: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
4: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
5: बार बार
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
7: FM मिर्ची वन इट्स हॉट
8: हेल्पलाइन
9: या मिर्ची हेल्पलाइन बताओ क्या प्रॉब्लम है हु?
8: जब भी मैं मॉल में शॉपिंग करने जाता हूँ एक चीज लेनी होती है पांच लेके आ जाता हूँ क्या करूँ
9: ये तो गलत है हु? अगली बार से एक ही लाना क्योंकि पांच लेकर पकड़े जाओगे हु? तो मॉल वाले चोर समझकर मारेंगे

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: क्या गुरूर करना अपनी अच्छाई पर, क्या गुरूर करना अपनी अच्छाई पर, किसी ना किसी की कहानी में हम भी गलत हैं। बट आप लोग एकदम सही जगह आए हैं। जी हाँ, सलाम नमस्ते, मैं हूँ मिर्चीशा और हम आ चुके हैं वीकेंड वाइब्स लेके आपको हफ्ते का पूरा हाल सुनाने की। कहाँ जा सकते हैं, क्या इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं, क्या एग्जीबिशन अटेंड कर सकते हैं, सब कुछ बताऊंगी ऑन माय शो। लेकिन हाँ, ये बातों में सच्चाई जरूर है कि किसी ना किसी की जिंदगी में हम लोग गलत है। बट इट्स ओके, हम लोगों को पता भी नहीं है कि हम किसकी जिंदगी में गलत हैं और किसकी जिंदगी में सही। अपनी लाइफ एंजॉय करिए, किसी का बुरा ना चाहे, बस यही दो चीजें जो होती है ना लाइफ में वो इम्पोर्टेंट रखती हैं। बाकी तो बस जिंदगी चल रही है और हम लोग चला रहे हैं। बाकी ऐसी ही मजेदार बातों के साथ मेरे साथ बने रहिए क्योंकि शो अभी बाकी है गाइस। तो बने रहिए मेरे साथ, बताती हूँ अभी थोड़ी ही देर में कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब कुछ ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 पे मिर्ची ईशा के साथ। इट्स हॉट
2: मिर्ची, फ्रेश माल।
3: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned.
2: The Mentalist Suhani Shah live.

0: भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
1: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM।

है, जब मेरी शादी हुई ना तो एक रस्म होती है हमारी शादी में कि जब लड़की को स्टेज पे बिठाया जाता है और बहुत सारी लेडीज आती हैं और श्रृंगार का सारा सामान उसकी गोद में रखती हैं एंड पैसे रखती हैं, मेकअप का सामान रखती हैं, और जो चुन्नी होती है उसको सिर पर चढ़ा के मुंह मीठा करवाया जाता है। और आपको पता है उसको मुंह मीठा किससे करवाया जाता है? शवारी से। शवारी मतलब ड्राई डेट से। और ये ट्रेडिशन जो है ना श्वारा खिलाने का, ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि कहा जाता है कि वो जो ड्राई श्वारा है अगर दुल्हन ने या दूल्हे ने खाया और अगर उसके बाद कोई और उसका वो जूठा खाता है तो उसकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है, ऐसी मान्यता है। बाकी होता क्या है ये नहीं पता, लेकिन हाँ उसको ही खिलाया जाता है जिसका नेक्स्ट नंबर होता है। कुछ ट्रेडिशंस जो होते हैं ना बड़े ही फनी होते हैं और इंटरेस्टिंग भी होते हैं। पर याशवारे से मुझे याद आया कि ये ड्राई डेट्स बहुत अमेजिंग होती हैं। हम बचपन में बहुत खाते थे, लेकिन हाँ अगर आप

ये सारी फार्मिंग होती है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी न्यू. अगर आप जाएंगे तो आपको और मजा आएगा. बाकी ऐसे ही मजेदार बातों के साथ सिलसिला जारी रहेगा. स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: Milci.
1: Buscabana, buscabana, sacabana. Gambana. Burga, burga. La vidva la burga. Milci, burga.
2: हेलो,
3: हाय शिवानी.
2: हाय
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली.
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच. आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया. अरे ग्रेट, मुझे बता दोगी शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये?
2: समाचार
3: ग्रेट. माइलेज मुझे बताओगी कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है. आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को. पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा.
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई.
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
2: फेवर.
3: मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है. अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था. एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा.
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी. अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना.
2: हाँ?
3: इसको ये नई गाड़ियों पे ही करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे. वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ. ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे. अभी कर लेना. शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है. नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है. आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता. मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है.
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए. वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी.
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले.
3: ये सिर्फ 3
2: करता
3: हूँ. अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा.
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी.
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ. इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा. अच्छा, मेरी बात
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना. आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा. शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना. शिवानी मेरी बात सुनो.
2: नहीं
3: नहीं, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ. मेरी बात सुन लो प्लीज. अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है. मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है. कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार. ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना.
2: कुकड़ुकु.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स

अरे अरे अरे अरे, मैं बस जाने वाली थी, बट मैंने कहा शायद आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जो है बतानी बड़ी ज़रूरी है कि अगर आप टॉय फेस्टिवल नहीं गए ना अभी तक, तो बस चंद दिन रह गए हैं। और ये टॉय फेस्टिवल ना हर साल एक बार आता है और एक महीने के लिए आता है, तो बेहतर है कि अगर आप नहीं गए हैं, बच्चों को अपना बचपना और अच्छे से व्यतीत करने का ये जो मौका मिलता है ना, वो बड़ा ही मज़ेदार है। क्योंकि हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ होता नहीं था, हम लोगों को तो हमारे मम्मी पापा ले जाते थे मेला देखने और हम बस वही झूलों में दो झूले गिन के होते थे, हमारे नाम ये वो करके हम उसमें ही खुश हो जाते थे। लेकिन आजकल की जनरेशन के लिए आता है बना बनाया प्लान, चाहे वो कोई कार्टून कैरेक्टर हो, चाहे वो कोई प्लेइंग एरिया हो, चाहे वो तरह तरह के कुछ टास्क हो, ये सब चीजें आती हैं आजकल के बच्चों के लिए। तो अगर आप अभी तक नहीं गए हैं तो 31st तक ही है ये, जल्दी से बच्चों को लेके जाइए और एंजॉय करिए। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1।

0: It's hot.
1: आजकल के बच्चे ना बड़े ही लकी हैं। उनको ऐसा मौका मिल रहा है इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें देखने का। हमारे टाइम पे क्या होता था, एक अंकल आते थे, झूले को ऐसे खुद ही हाथ से घुमाते थे और हम वो झूल के खुश हो जाते थे। लेकिन आपके जो बच्चे हैं ना, उनको आप बुद्धू नहीं बना सकते, उनको आप इतने इंटेलिजेंट है ना, उनको आप घुमा नहीं सकते, लेकिन वो हमें घुमा सकते हैं उल्टा। और उनके लिए ना वैसे ही इवेंट्स हैं, ऐसे इवेंट्स हैं कि उनकी पर्सनालिटी वो सूट करते हैं। तो अभी ये एक इवेंट बता रही हूँ ना आपको, जो है द कलर वर्स एक्सपीरियंस, जो एक इंटरैक्टिव फैमिली फोकस्ड एंटरटेनमेंट है। एंड ये अट्रैक्शन रोज हो रहा है, 15 जुलाई से ये शुरू हो चुका है एंड 15 सितंबर तक रहेगा, कतारा कल्चरल विलेज में, साउथ पार्किंग में। एंड ये डेवलप किया गया है इन पार्टनरशिप विद स्पेस टून, जो एक मल्टी सेंसरी इंडोर अट्रैक्शन विजिटर्स के लिए क्रिएट करती है। एंड ये बड़ा वाइज डिसीजन है इस टाइम, क्योंकि बहुत ही गर्मी है बाहर और इस दौरान हम इंडोर एक्टिविटीज ही सोचते हैं बच्चों के लिए। ये बहुत ही वाइज डिसीजन है, बच्चों के साथ जाइए, इंजॉय करिए। एंड बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, एंड बच्चा भी इंजॉय करेगा, आप भी इंजॉय करेंगे। बस जाइए और इंजॉय करिए। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 एंड साथ।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: आलिया, आपकी मम्मी सोनी राजदान बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राजी के सेट पे were you nervous or excited to work along with your mom? What was the feeling?
3: You know, I was very nervous क्योंकि पहले तो मम्मी भी है, पर number one, first my co-actor. On set वो मेरी पहली co-actor है, पहली मम्मी नहीं बन सकती. तो मैं nervous थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो nervous है तो मैं ज्यादा nervous हो जाऊंगी. अगर उनको लाइनें शायद नहीं आते हैं तो मैं कैसे कहूंगी कि उनको नहीं आ रहा है. तो आई वाज लाइक, मुझे ऐसा लगता है मैं दो लोगों के लिए एक्टिंग कर रही हूं. यू नो, मैं जब वो पहली बार सेट पे आई, पर तब
2: आलिया वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं. चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट. शी कैन ऑलरेडी रीड व्हाट्स ऑन योर माइंड, शी नोज व्हाट यू आर थिंकिंग. कमिंग सून, स्टे ट्यून्ड.
4: The Mentalist Suhani Shah, live

0: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
1: मैं जब भी आटा गूंथती हूँ तो आटा मेरे हाथ में चिपक जाता है, क्या करूँ?
0: हाथ में चिपक जाता है? सिंपल तो है, क्या क्या करूँ? पैर से आटा गूंथ, हाथ में नहीं चिपकेगा।

0: कभी नोटिस किया है कि बचपन की ना सबसे खूबसूरत यादें वही होती थी जहाँ पे हमने सिर्फ खेला नहीं कुछ नया सीखा भी था। मुझे आज भी याद है हमारे स्कूल में समर कैंप्स होते थे। जब समर कैंप होते थे ना तो उसमें एक एक पीरियड हर चीज का होता था। पहले वॉलीबॉल खेलने का टाइम होता था तब हम वॉलीबॉल खेलते थे खूब सारा एंड देन थोड़ी देर बाद ही ना साइंस का एक नया एक्सपेरिमेंट आ जाता था जिसमें अनियन पील करके उसमें आयोडीन का लिक्विड डाल के माइक्रोस्कोप से देखा जाता था। उसके अलावा फिर अपने इमेजिनेशन के साथ नए रोबोट डिजाइन करते थे, कुछ क्राफ्ट का करते थे और शाम होते होते ना दोस्तों के साथ हंसी और यादें भी बना रहे होते थे। तो ये साइमल्टेनियसली चलता था। बस अगर आप चाहते कि आपके भी ये नया स्किल कोई जाने, कोई नई एक्टिविटी सीखे तो कतर फाउंडेशन एजुकेशन सिटी इस समर लेके आया है आपके बच्चों के लिए एक ऐसा समर कैंप जहाँ पे बहुत सारी वर्कशॉप्स होने वाली हैं, क्लासेस, एक्टिविटीज। ये एंड ऑफ अगस्त तक रहेगा और ऐसे कैंप्स में ना बच्चे अच्छे से डिस्कवर कर पाते हैं कि व्हाट दे लाइक व्हाट दे डिसलाइक। तो बस अगर आप भी कहीं नहीं गए हैं और कतर में ही हैं तो अपने बच्चों को आज ही ज्वाइन करवाइए और स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।
1: मिर्ची फ्रेश माल।
2: लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून।

0: गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हेलो
2: मिस्टर गौतम,
1: कौन बोल रहे हैं?
2: सर मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं आप सुना है वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
1: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
2: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक कहीं घुस गया था, तो मेरे को पोले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको, मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
1: हाँ, सर कुछ गाके सुनाई?
2: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद करने हैं सर, वो देखा है ना कोंडा आपने? है ना कोंडा फिल्म देखी है?
1: एक काम करो, अपने गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको भेज दो।
2: वही सर, है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
1: कौन से गाने
2: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। मैं एक पेशकश कर रहा हूँ, तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे हाथ खाएगा।
1: सुन ले बात मेरी, बात सुन पहले बात।
2: हाँ सर,
1: और इसे बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
2: है सर। बोलिए,
1: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात है?
2: जी सर।
1: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
3: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका।

0: रोहित के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट शी कैन ऑलरेडी रीड व्हाट्स ऑन योर माइंड शी नोज व्हाट यू आर थिंकिंग कमिंग सून स्टे ट्यून्ड
1: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह

0: Association with Dairy Queen. Beat the heat with Oreo Strawberry Choco Blizzard at Dairy Queen. And Papa John's. Enjoy Double Delight offer. Two small pizzas at 44. Two medium pizzas at 66. Two large pizzas at 99 Rial. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Restaurant partner, Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues today. Printing and advertising partner, Brand Arts.
2: Visual media partner, Rehab Media.
1: Production partner, Symphony.
3: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
2: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
4: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

एक वक्त की बात है, हर बार जब कोई पुरानी बिल्डिंग गिराई जाती थी ना, तो उसका मलबा बस एक प्रॉब्लम बन जाता था। धूल मिट्टी वेस्ट को लेकर ना सिर चकराया जाता था कि भाई इसका तो कोई काम नहीं है, इसको हम लोग डाल देते हैं डंपिंग यार्ड में। लेकिन कतर ने इस कहानी का डायरेक्शन ही बदल दिया। आजकल ने सोचा जिसे हम वेस्ट समझ रहे हैं वही तो कल की बिल्डिंग का फाउंडेशन बन सकता है। और बस 2022 से शुरू हुआ एक स्मार्ट सिस्टम जहां कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट को रिसाइकल और रीयूज किया जाने लगा। आज नतीजा ये है कि लगभग 2.5 मिलियन क्यूबिक मीटर्स एक्सकेवेशन मटेरियल दोबारा से इस्तेमाल किया गया है और 3 लाख टन से ज्यादा कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट रिसाइकल हो चुका है। नाउ ये सोचने की बात है कि इसी को बोलते हैं स्मार्ट डिसीजन एंड बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। सोचिए, जो पत्थर और मिट्टी कल तक बेकार लग रहे थे वो आज वही नए प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन रहे हैं। सिर्फ वेस्ट कम नहीं हुआ है, रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे से हमने यूज किए हैं एंड ऑल्सो इट्स एनवायरमेंट फ्रेंडली है। एंड ये सिर्फ रिसाइकलिंग की कहानी नहीं है बल्कि सोच बदलने की कहानी है कि जहां वेस्ट को वैल्यू में बदला जा रहा है और शायद इसी को बोलते हैं एक सस्टेनेबल फ्यूचर की शुरुआत। ऐसी ही बातों के साथ सिलसिला जारी रहेगा। स्टेडियम विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

आपने मनी हाइस्ट देखी है तो उसका सबसे स्टाइलिश और जो एक मिस्टीरियस सा कैरेक्टर है ना, वो तो आपको याद ही होगा. यस, बर्लिन. और अब उसी कैरेक्टर की जो बैक स्टोरी लेकर आया ना नेटफ्लिक्स, ओ माय गॉड, यू हैव टू सी इट. ये सीरीज जो है ना उस वक्त में ले जाती है जब बर्लिन अपनी लाइफ की सबसे एम्बिशियस हाइस्ट प्लान कर रहा होता है. लेकिन इस बार सिर्फ रॉबरी नहीं होती है बल्कि फ्रेंडशिप, लव, लॉयल्टी और बिट्रेयल का भी जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिला है. हर एपिसोड में ना आपको एक स्मार्ट प्लानिंग दिखेगी, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट दिखेंगे, आपको स्क्रीन से चिपक कर ही रहना पड़ेगा. सीरियसली मेरे को यही लगा, कल ही मैंने फिनिश की है ये और बहुत ही अमेजिंग सीरीज है. एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि बर्लिन का जो कैरेक्टर है ना, ऑडियंस को इतना पसंद आया था कि मनी हाइस्ट खत्म होने के बाद ही उसके लिए एक अलग से स्पिन ऑफ सीरीज बनाई गई थी. और आपको इंटेलिजेंट क्राइम थ्रिलर्स और ये जो स्टाइलिश कैरेक्टर्स और सस्पेंस पसंद है ना, तो बर्लिन नेटफ्लिक्स पर डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है. तो बस इस हफ्ते का प्लान बर्लिन बिंज वॉच, और मेरे साथ बने रहिए फॉर मोर अपडेट्स 89.6 पे मिर्ची 1 इट्स हॉट.

0: दोस्ती का ही कुछ सुले मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
1: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
2: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
3: खूब मिलेगा, मिलेगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
6: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

You know what? It made me realize that जिम्मेदारी की एक खूबी होती है, ये आपको बिगड़ने नहीं देती। जी हाँ, बिगड़ने का समय ही नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारियाँ इतनी आ जाती है एक एज के बाद कि आप उसमें इतना महफूज हो जाते हो कि आपको समझ में नहीं आता कि कि बिगड़ना क्या होता है। आपको समझ ही नहीं आता क्योंकि आप हर तरीके के कामों में बिजी हैं, ऑक्यूपाइड हैं, बच्चे हो, अपने बड़े हो, सबका ध्यान रख रहे हैं, लेकिन अपना ध्यान भी रखना उतना ही जरूरी है। आप भी बहुत प्रेशियस हैं, अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सेल्फ केयर इज सेल्फ लव एंड इट्स नॉट सेल्फिश। ये सब अलग अलग चीजें हैं। अपना ध्यान नहीं रखोगे तो घर का कैसे रखोगे, है ना, यही बोलते हैं ना। तो बस ये एक ऐसी लाइन है जो सब पे लागू होती है, घर का चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, सबके लिए ये लागू होती है कि अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे आप सबका ध्यान कैसे रख पाओगे। तो बस इसी के साथ आज हमारा समय हो चुका है, जाने का हो चुका है टाइम। अब आपसे लेती हूँ अलविदा, मिलूंगी आपको अगले वीकेंड इसी समय इसी वक्त और ढेर सारी बातें और इवेंट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शबा खैर, सी यू नेक्स्ट वीकेंड, टाटा एंड स्टे ट्यून्ड विद अस ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कुणाल खेमू एज एन एक्टर आपको डायलॉग्स याद रखने पड़ते हैं, आपको स्क्रीन प्ले याद रखना पड़ता है. एज ए ह्यूमन बीइंग आपको आपके सपने याद रहते हैं?
3: मुझे एक्चुअली सपने में प्रॉब्लम है, आई डोंट रिमेम्बर माय ड्रीम्स. मुझे अपने सपने याद नहीं रहते, तो आई थिंक विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि मुझे नाइटमेयर्स भी याद नहीं रहते. तो आई कैन मैं एक नई शुरुआत करता हूँ हर दिन की.
2: क्लासिक फॉर्मूला है कुणाल खेमू, काश हम भी ऐसा कर पाते, हर दिन की नई शुरुआत. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi, it's hot.

0: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
1: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
2: कैसे रुक सकता है?
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
3: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मेरे हिसाब से तो ये बॉडी पॉजिटिविटी नहीं है।
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पिटी उन दिनों आप, एंड आई एम श्योर आपको धमाल 4 के बारे में तो पता होगा। कुछ दिनों पहले रिलीज हुई थी ये फिल्म, एंड उसमें एक किरदार है अंजलि आनंद ने जिस किरदार को प्ले किया है। जैसा कि हम जानते हैं, या अगर नहीं पता हो तो बता दूं, अंजलि आनंद जो है वो हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बॉडी पॉजिटिविटी को लेकर एक फ्लैग बेरर मानी जाती है। बट धमाल 4 में जो किरदार उन्होंने निभाया है उसकी वजह से उनको काफी सारे बैकलैश भी मिले हैं, जिसपे शी एड्रेस्ड बॉडी शेमिंग डिबेट्स, एंड उन्होंने कहा कि उनकी डेफिनेशन उनका अपीयरेंस नहीं है और वो अपने काम को इस चीज से कभी भी ओवरशैडो नहीं होने देती। बट अंजलि, मैं जिस पर्सपेक्टिव से आपकी इस फिल्म को देख के आई हूँ, मेरे आसपास भी बहुत सारे लोग प्लस साइज में आते हैं, एंड दे वर लेजिट ऑफेंडेड बाय द रिमार्क्स जो इस फिल्म में आपके ऊपर किए गए थे। वो सीन में आपके एंट्री पे हाथी की आवाज हो या अदर बॉडी शेमिंग जोक्स जो आपके ऊपर मारे गए हैं इन द मूवी। सो आई एम सॉरी, दिस फॉर मी इज नॉट बॉडी पॉजिटिविटी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और आप इस चीज पे क्या राय रखते हैं वो मुझे जरूर बताइएगा मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, iskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La
1: virba la burga. Mirci, burga. हेलो
2: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
1: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
2: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
1: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
2: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
1: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
2: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
1: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
2: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
1: कौन कौन आ सकते, किसकी जिप्सी?
2: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
1: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
2: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
1: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
2: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक मिनट होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
1: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
2: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेट वेट मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आपको पहले आ रहा हूँ,
1: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
2: किसकी डेथ हो गई सर?
1: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
2: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स का फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नहीं है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
1: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसा हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
2: मैं कहाँ रहा हूँ,
1: सॉरी आप अभी कहाँ पर हो?
2: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
1: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, परेशान हूँ मैं।
2: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
1: यार।
2: थैंक यू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट। She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned.
4: The Mentalist Suhani Shah.

0: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
1: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
2: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
3: कम है के?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
6: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: खेलो मगर प्यार से। श्रुति
1: श्रुति मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: नॉटी माइंड, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तो मिर्ची फिल्मची गेम खेलने की बात कर रही हूँ यार। सो बेसिकली द ड्रिल इज, आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे डीएम में अपना नंबर भेजना होता है, जिसके बाद मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ। एंड इसके थ्रू हमें पता चलता है कि भाई आप कितने बड़े वाले फिल्मची हैं। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे कौन है?
2: मैं प्रथा बोल रही हूँ।
0: हाय प्रथा, कैसे हो आप?
2: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं बिल्कुल बढ़िया। तो क्या आप आज के मिर्ची फिल्मची गेम की शुरुआत करना चाहेंगी?
2: हाँ हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ।
0: ओके, लेट्स बिगिन। रवीना टंडन पीली साड़ी में बारिश वाला डांस किस फिल्म में करती हैं?
2: मोहरा।
0: मोहरा में तू चीज बड़ी है मस्त मस्त कौन करता है?
2: अक्षय कुमार। एक और परेश रावल भी रहता है।
0: अक्षय कुमार की फिल्म जिसमें उनको चाइना के एक वॉरियर का री इंकारनेशन समझते हैं?
2: चांदनी चौक टू चाइना
0: में जुड़वा कैरेक्टर किसका है?
2: दीपिका पादुकोण
0: की फिल्म जिसमें वो अपने ऑनर के लिए खुद को जौहर कर देती हैं?
2: पद्मावत
0: में राजपूत राजा कौन है?
2: शाहिद कपूर
0: की फिल्म जिसमें वो एक अनलकी आर्किटेक्ट हैं, जो फिल्म की हीरोइन को अपना लकी चांस समझते हैं?
2: किस्मत कनेक्शन
0: की फीमेल लीड?
2: विद्या बालन
0: की फिल्म जिसमें वो अमिताभ बच्चन की मम्मी बनी है?
2: पा
0: में असली पापा कौन है?
2: अभिषेक बच्चन
0: की फिल्म जिसमें पेटीकोट बाबा कौवा बिरयानी खाते हैं?
2: नहीं पता।
0: कोई बात नहीं, बट यहाँ तक बहुत मस्त गेम खेला है यार आपने।
2: थैंक यू। आंसर क्या है लेकिन?
0: अब वो आपको बता दिया तो आगे का गेम कैसे कंटिन्यू होगा, बट कोई नहीं, आपको ये टैग तो दे दूं।
3: मिर्ची फिल्मची।
0: तो बाबू मोशाय इस फिल्मची गेम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देन यू ऑलरेडी नो द ड्रिल। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
1: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, मैं तो मिर्ची फिल्म से गेम खेलने की बात कर रही हूँ यार। आपके दिमाग के घोड़े किधर किधर दौड़े, उनको लगाम लगाइए, वापस लाइए। बेसिकली द ड्रिल इज, आपको मेरे इंस्टा के डीएम में अपना नंबर भेजना होता है, फिर मैं आपको कॉल करती हूँ और इस गेम की शुरुआत करती हूँ। और आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे थी प्रिथा, बट शी गॉट स्टक एट अ पॉइंट, और उसके आगे का गेम खेलने के लिए हमारे साथ हैं पुष्पाल जी। तो सर चलिए आपके लिए मैं सवाल फिर से रिपीट कर देती हूँ। अभिषेक बच्चन की फिल्म जिसमें पेटीकोट बाबा कौवा बिरयानी खाते हैं।
3: रन।
0: रन की फीमेल लीड।
3: भूमिका चावला।
0: भूमिका चावला की फिल्म जिसमें उनसे हीरो को ऑब्सेसिव प्यार हो जाता है।
3: या तेरे नाम।
0: तेरे नाम में राधे कौन है।
3: सलमान खान।
0: सलमान खान की फिल्म जिसमें वो टांगों के बीच में टॉवल डाल के डांस करते हैं।
3: मुझसे शादी करोगी।
0: मुझसे शादी करोगी में सलमान को किससे शादी करनी है।
3: प्रियंका चोपड़ा।
0: प्रियंका चोपड़ा की फिल्म जिसमें वो मॉडल बनी है।
3: फैशन। फैशन।
0: फैशन में एक डायलॉग है, इवी वी वी वी वी वी, ये कौन करता है।
3: कंगना रनौत।
0: कंगना रनौत की फिल्म जिसमें उनका पति अदरक के जैसे हर जगह से बढ़ता रह रहा है।
3: तनु वेट्स मनु रिटर्न्स
0: में उनका पति कौन है।
3: आर माधवन।
0: आर माधवन की फिल्म जिसमें वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है लेकिन उनको फोटोग्राफी पसंद है।
3: थ्री इडियट्स।
0: थ्री इडियट्स में प्रिंसिपल की बेटी कौन है।
3: करीना कपूर।
0: यस, करीना कपूर की फिल्म जिसमें वो अपनी फेवरेट है।
3: शाहिद कपूर के साथ है मूवी।
0: हाँ जी।
3: एंड
0: द वे वी मेट ओवर हियर ऑन दिस गेम इज अल्टीमेट, इसलिए आपको ये टैग तो जरूर देना है।
1: मिर्ची फिल्म जी।
0: अब देखो, इस गेम को सुनने के बाद अगर आपके अंदर का फिल्मी कीड़ा फोमो में जा रहा है, देन वरी नॉट, ये गेम कल फिर से वापस आएगा। राइट हियर ऑन मिर्ची, मैं हूँ आपके साथ श्रुति। इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: Amit Trivedi, studio hai, guitar hai, mahol hai. Rukein kis liye hain aap?
2: होने दो बतिया सीने में दिल सॉरी वन मोर टेक प्लीज
1: टेक एज मेनी टेक्स एज यू वांट अमित त्रिवेदी हम तो सुनते रहेंगे मिर्ची इट्स हॉट
0: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
3: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: हेलो शॉप्स, आप प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
1: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
0: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
2: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
0: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
3: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
4: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

0: पता नहीं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी कभी कभी सरप्राइज दे देती है यार।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: सो जनरली हमने हिंदी फिल्मों में क्या देखा है, ग्लैमराइजेशन ऑफ स्टॉकिंग एज अ रिस्पॉन्स टू रिजेक्शन। बट थैंकफुली देर आर अ फ्यू मूवीज जिसमें हीरो को रिजेक्शन मिलने के बाद भी वो अच्छे तरीके से एक रियल मैन के जैसे उस सिचुएशन को हैंडल करता हुआ नजर आता है। वेल ही एक्सेप्ट्स इट एंड लड़की को हैरेस नहीं करता एंड ट्राइज टू मूव ऑन। अब आई नो दैट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मूवीज एकदम से आइडियल नहीं होती, बट आज जिन मूवीज की बात कर रही हूँ, वेल दे आर स्टिल बेटर देन मोस्ट व्हेन इट कम्स टू शोकेसिंग हीरोज हैंडलिंग रिजेक्शन। तो आज पांच का पंच की लिस्ट में नंबर वन पे आई टॉक अबाउट द मूवी कभी हाँ कभी ना। 1994 में आई थी ये फिल्म, डायरेक्ट किया था कुंदन शाह ने एंड it was one of the fine romantic dramas to come out of Bollywood, jisme hero was flawed but relatable and sabse important baat ki by the end of the movie he learned ki wo apna pyar kisi pe force nahi kar sakta. Yes, usne koshish ki ki wo apne lady love ko woo kare, but jitne bhi techniques apnaye usne wo sare actions were not rewarded by love and uski journey resulted in his own growth. Quite progressive, right? So, ऐसी और कुछ movies हैं जिनकी बात मैं करने वाली हूँ, but in a while, अभी के लिए you enjoy the songs right here on Mirchi, श्रुति आपके साथ है।

0: हेल्पलाइन?
1: बोल दामिनी बोल। बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: वो ना, वो पराठे गरम करते वक्त मैं कितना भी ध्यान रखूं, वो जल ही जाते हैं। और मेरी मम्मी इतना गुस्सा करती है, मैं क्या करूं?
1: क्या करूं का क्या मतलब है? जलने वाले तो जलेंगे, तू मम्मी को बोल के किचन में ना खड़ी रहे। सिंपल है।
2: खोपड़ी तोड़ खोपड़ी तोड़ साले।

0: only on 89.6 Mirchi One. It's hot. Mirchi, fresh maal.
1: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है. उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन.

इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक।

0: यार आपको नहीं लगता हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ चेंजेस होने चाहिए?
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: नहीं मतलब हम सदियों से देखते आ रहे हैं कि मूवी में एक हीरो हीरोइन को स्टॉक करता है, मतलब उसे छेड़ता है, उसके बाद फिर गाने वाने होते हैं और फिर लड़की जो है वो मान जाती है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर के जैसे दिखाया जाता है इन मूवीज, बट अगर रियल लाइफ में ऐसा हो तो ऑफकोर्स आपको पसंद नहीं आएगा यार। एनीवे, थैंकफुली कुछ मूवीज ऐसी हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में विच हैव एक्चुअली शोन कि जो हीरो है ही हैज बिन रिजेक्टेड एंड उसने उस चीज को बड़े अच्छे से एक रियल मैन के जैसे हैंडल किया है, उसको एक्सेप्ट किया है और लड़की को हैरेस नहीं किया है और मूव ऑन करने की कोशिश की है। वेल आज पांच का पंच की लिस्ट में कुछ ऐसी ही मूवीज की बात हो रही है जिसमें नंबर वन पे आई टॉक्ड अबाउट द फिल्म कभी हाँ कभी ना, नंबर टू पे आई एम टॉकिंग अबाउट फिल्म एक मैं और एक तू। वेल ये फिल्म शकुन बत्रा की डायरेक्टोरियल डेब्यू थी इन द इंडस्ट्री। मूवी में लीड रोल में नजर आए इमरान खान एंड करीना कपूर एंड इट वॉज अ लव स्टोरी दैट टॉक्ड अबाउट एक तरफा प्यार, लेकिन उसमें ना कोई थिएट्रिक्स या फिर मेलोड्रामा नहीं था। सो देयर इज दिस कैरेक्टर राहुल विच इज अ परफेक्ट लीड जो नॉन प्रॉब्लमेटिक है, और ऐसा इसलिए बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स की रायमा उसके फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं कर सकती जैसे वो चाहता है, और इसलिए राहुल एक्सेप्ट करता है कि वो रायमा की जिंदगी में उसका फ्रेंड बन के रहेगा विदाउट गिल्टिंग हर इनटू चेंजिंग हर माइंड। सो दिस इज समथिंग रियली ब्यूटीफुल, राइट? वेल ऐसी एक और मूवी है विच इज ऑन द लिस्ट एंड ये है नंबर तीन पे लक्ष्य, डायरेक्टेड बाय फरहान अख्तर। द मूवी रिलीज्ड इन द ईयर 2004। यस यस यस आई नो कि फिल्म में करण अल्टीमेटली रोमिला से मिल जाता है बाय द एंड, बट द वे ही डेल्ट विद द सिचुएशन, मतलब रोमिला ने जो उसको डंप किया था वो बड़ा ही ऑसम था। वो लड़की को लैश आउट नहीं करता और ना ही उसे ब्लेम करता है, बट ही रादर डिसाइड्स टू ग्रो। इन शॉर्ट वो रियलाइज करता है कि वो जिंदगी भर एक मैन चाइल्ड बन के नहीं रह सकता। समथिंग रेयरली फाउंड इन हिंदी सिनेमा, राइट? तो बाबू मोशाए इस लिस्ट में अभी और भी कुछ मूवीज की बात होने वाली है, बट फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। जस्ट एंजॉय द सॉन्ग्स। श्रुति विल बी राइट बैक।

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La vieva la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हाय शिवानी.
2: हाय
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली.
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच. आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया. अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है. आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को. पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा.
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई.
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ. शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था. एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा.
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी. अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना.
2: हाँ?
3: इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे. वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ. ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना. शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है. नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है. आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता. मैं सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है.
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए. वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले.
3: ये सिर्फ 3, अच्छा एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले.
3: शिवानी,
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ. इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा. अच्छा मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद के कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज.
3: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन मत काटना. शिवानी मेरी बात सुनो.
2: बदतमीजी
3: नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज. अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है. मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है. कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार. ज़ूबी शराब, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना.
2: कुकड़ुकु
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट,
5: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इज़न्ट इट? 4 balls left, दे नीड 12 runs टू विन.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं.
7: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC. Stay tuned with Mirchi. The mentalist Suhani Shah, live.

0: लीक से जरा हटके मूवीज अच्छी नहीं लगती।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: और अगर बात करूँ हिंदी सिनेमा में लड़का लड़की के प्यार की, तो उसकी शुरुआत तो स्टॉकिंग या फिर छेड़छाड़ से होती है नहीं, और इसको इतने अच्छे तरीके से ग्लैमराइज किया जाता है फिल्मों में कि क्या ही बताएं। बट थैंकफुली देयर आर मूवीज वेयर द हीरो इज रिजेक्टेड बाय द लव इंटरेस्ट, बट वो उसको एक रियल मैन के जैसे हैंडल करता है, ही एक्सेप्ट्स इट, लड़की को हैरेस नहीं करता एंड ट्राइज टू मूव ऑन। अब ये मूवीज एकदम से आइडियल नहीं है, आई अंडरस्टैंड, बट दे आर स्टिल बेटर देन मोस्ट ऑफ इट, राइट? तो आज के पांच का पंच की लिस्ट में आई एम टॉकिंग अबाउट सच फिल्म्स, जिसमें नंबर वन पे आई टॉक्ड अबाउट कभी हाँ कभी ना, नंबर दो पे एक मैं और एक तू, नंबर तीन पे लक्ष्य, अब आ रही है नंबर चार पे बात करने की फिल्म बर्फी के बारे में। सो इस मूवी से एक चीज तो समझ आती है दैट नॉट ऑल मेन टर्न टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ऑल्दो बर्फी को लास्ट में झिलमिल मिल जाती है एज हिज लव इंटरेस्ट इन द मूवी, बट उसको उसका हार्ट ब्रेक फेस करना पड़ता है, वो श्रुति के साथ जो उसका फर्स्ट हार्ट ब्रेक होता है, जिसके बाद ही डिड नॉट टर्न हिमसेल्फ इनटू अ हार्डन्ड सोल जो शराब में डूब गया, अनलाइक यू नो कबीर सिंह। रादर उसने अपने इस हार्ट ब्रेक को एक्सेप्ट किया और ये एक्सेप्ट किया कि श्रुति एक डिफरेंट लाइफ चुन सकती है एंड कंटिन्यू टू केयर फॉर झिलमिल एंड अल्टीमेटली फॉल इन लव विद हर। Quite interesting, right? चलो लिस्ट में जरा आगे बढ़ते हैं, नंबर पांच पे बात करते हैं फिल्म कुछ कुछ होता है के बारे में। Well, फिल्म में सलमान खान का कैरेक्टर अमन, स्पेसिफिकली उसकी बात करनी है, क्योंकि he may not be the leading hero, but he is left at the altar literally. ये देखा आपने कितना दर्द हुआ होगा उसको यार। हाँ आई नो ये सब मेलोड्रामा था, yes, मूवी में और भी बहुत सारे इश्यूज थे, बट अमन ने जिस अमेजिंग तरीके से उस सिचुएशन को समझा, ये समझा दैट इट्स नॉट ओके टू फोर्स समवन टू मैरी यू अगर वो आपसे प्यार नहीं करता। It was really sweet, isn't it? तो बाबू मोशाय, मेरे इस पांच का पंच की लिस्ट में आज बस इतनी ही मूवीज की बातें होंगी। आप भी इस लिस्ट में और कुछ मूवीज ऐड करना चाहते हैं, then feel free to do that. मिर्ची श्रुति के नाम से मैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मिलूंगी। In the meanwhile, enjoy the songs right here on मिर्ची।

0: श्रुति
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
2: और भाई ये सीक्वल के साथ तो रियल लाइफ खोसला बनने वाली है शायद से। मैं बात कर रही हूँ दिव्या खोसला कुमार की, क्योंकि खोसला का घोसला 2 के स्टार कास्ट में उनका नाम भी ऐड हो चुका है। यस यू हर्ड इट राइट। सबसे पहली खुशी की बात तो हमारे लिए ये है कि साल 2006 की कल्ट कॉमेडी खोसला का सीक्वल आ रहा है, जिसमें ओरिजिनल कास्ट मेंबर्स के अलावा कुछ नए नाम भी जुड़े हैं, विच इंक्लूड्स दिव्या खोसला कुमार, रवि किशन एंड दानिश इकबाल। बाकी आई एम रियली एक्साइटेड, क्योंकि आइकॉनिक खोसला फैमिली एक बार फिर से नए चैप्टर के साथ ह्यूमर, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स और इमोशनल मोमेंट्स लेकर आएगी। सो करेंटली द मूवी इज अंडर प्री प्रोडक्शन, जिसके रिलीज स्केड्यूल और एडिशनल कास्ट के ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स बहुत जल्द होने वाले हैं। वैसे ऑनेस्टली अगर आपने अभी तक खोसला का घोसला मूवी नहीं देखी, देन ब्रो आप इस दुनिया में क्या कर रहे हो? अच्छा कंटेंट तो छोड़ रखा है यार, और लगे रहते हो यूं ही इंस्टाग्राम पे डूम स्क्रोलिंग करते हुए। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: आलिया आपकी मम्मी सोनी राजदान बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राजी के सेट पे वर यू नर्वस और एक्साइटेड टू वर्क अलोंग विद योर मॉम, व्हाट वाज द फीलिंग?
3: यू नो आई वाज वेरी नर्वस क्योंकि पहले तो मम्मी भी है, पर नंबर वन फर्स्ट माय को एक्टर ऑन सेट, वो मेरी पहली को एक्टर है, पहली मम्मी नहीं बन सकती. तो मैं नर्वस थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो नर्वस है तो मैं ज्यादा नर्वस हो जाऊंगी. अगर उनको लाइने शायद नहीं आते हैं तो मैं ऐसा कहूंगी कि उनको नहीं आ रहा है. तो आई वाज लाइक, मुझे ऐसा लगता है मैं दो लोगों के लिए एक्टिंग कर रही हूं. यू नो मैं जब वो पहली बार सेट पे आई, पर तब
2: आलिया वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं. चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के. एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC. स्टे ट्यून्ड विद मिर्ची, द मेंटलिस्ट सुहानीशा.

ब्रेड पकौड़े की कसम रणबीर कपूर को रणवीर सिंह की तरफ से मैं थैंक्स बोल देती हूँ यार। अगर ब्रेड पकौड़े की कसम से आप ये नहीं समझ पाए कि मैं फिल्म बैंड बाजा बारात की बात करने वाली हूँ बाबू मोशराय, तो क्या खाक फिल्मी है आप? जरा इंटेक अपना बढ़ाइए मेरे शो का, देखिएगा फिर दिन दोगुनी रात चौगुनी किस तरीके से फिल्मी आपा आपके अंदर घुसता है। बट यस, टॉकिंग अबाउट दिस फिल्म जो रिलीज हुई थी साल 2010 में, जिसको डायरेक्ट किया था मनीष शर्मा ने और जिस फिल्म के साथ रणवीर सिंह ने अपना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री डेब्यू किया था, उसके लिए मैं रणबीर कपूर को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये फिल्म सबसे पहले रणबीर कपूर को ऑफर की गई थी, बट ही डिडंट वांट टू प्ले बिट्टू। लेकिन बाद में जब ये फिल्म इतना अच्छा परफॉर्म कर गई ना, तो रणबीर कपूर को रिग्रेट हो रहा था अपने उस डिसीजन पे। बट कोई नहीं, उनकी वजह से रणवीर सिंह को इतना अल्टीमेट लेवल का डेब्यू का मौका मिल पाया यार। बाकी अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा तो लेट मी टेल यू, फिल्म में रेडियो मिर्ची का जिक्र भी है, और सिर्फ जिक्र नहीं, बेसिकली जब बिट्टू और श्रुति के बीच में वो कांड हो जाता है ना, और बिट्टू श्रुति को लास्ट टाइम उसके घर ड्रॉप कर रहा होता है, तो ही इज लिसनिंग टू रेडियो मिर्ची, एंड स्पेसिफिकली हमारे आरजे नवेद बोल रहे होते हैं उनके कानों में। पता था आपको? चलो कोई नहीं, मैंने बता दिया ना। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: क्या बताओ यार, कंपनी इतनी टॉक्सिक हो गई है मेरी। टीम से सब लोग एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। अब मैं अकेला ही बच गया हूँ, क्या करूँ?
1: अरे मामू, तो तू छोड़ देना तो कंपनी से क्या टॉक्सिसिटी चली जाएगी।
2: आपसे पूछना था,

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: Har Friday Bollywood ke liye is a new start. Ek nayi kahani, lekin har kahani nayi yaad ban ke nahi rehti. Aur shayad isliye aaj hum ek ajeeb era mein jee rahe hain. Filmein bhi wapas aa rahi hain. कैरेक्टर्स भी वापस आ रहे हैं, सॉन्ग्स भी वापस आ रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को भी पता है यादें बनाना उन्हें दोबारा बेचने से कई ज्यादा मुश्किल होता है. अगस्त शायद इसी सवाल का जवाब लेकर आ रहा है. यू गॉट टॉक्सिक, यू गॉट आवारापन, यू गॉट बंटवारा 1947. तो क्या 2026 सिर्फ हिट्स देगा या फिर हमें कुछ ऐसी फिल्में और गाने भी देगा जिनके बारे में हम 10 साल बाद भी बात करेंगे. इसी होप के साथ वेलकम टू द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का डेफिनेटिव बॉलीवुड म्यूजिक काउंटडाउन. एंड आई एम सुरेन सुंदरम.
4: नंबर 20.

a banger by Jasmine Sandlers on number 20 from Dhurandhar. Aur number 19 par debut kar raha hai आंखों से तूने ये क्या कह दिया, एक ऐसे गाने का रीमेक। इसके ओरिजिनल वर्जन को किसी मेकओवर की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। और मजेदार बात यह है कि ये जो फिल्म है भाई तेरा स्टार है, उसके अंदर हीरो राघव जुयाल डायरेक्टर से खुद पूछते हैं क्लासिक गाना रीमेक क्यों कर रहे हो, और जवाब मिलता है रिकॉल वैल्यू। बस अफसोस इतना सा है, रिकॉल तो सिर्फ ओरिजिनल का रह जाएगा, नया वर्जन सिर्फ उसकी डीजे मिक्स कॉपी बन के रह जाएगी। फिर भी काउंटडाउन पर उसकी जगह बन रही है। दिस इज आंखों से तूने क्या कह दिया फ्रॉम भाई तेरा स्टार है, स्टारिंग राघव जुयाल। इस हफ्ते गाना नंबर 19। नंबर 19।

0: you want to play. Fall in line, little boy. Because you can't run away. There's nowhere to hide. There's nowhere to go. I've shattered the ceiling. There's blood on the floor. A fight to the finish. Or a kiss goodbye. Get your last wish, baby. Because you're gonna die.
1: Have you noticed?
2: जब जज्बात बहुत बड़े हो जाते हैं तो लोग बोलना कम कर देते हैं, गाने चला देते हैं। पिछले कुछ दिनों में देश ने बहुत कुछ देखा, बहुत सारी आवाजें सुनी, बहुत सारे नारे सुने, लेकिन एक बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। हर जगह वही तीन गाने सबको सुनाई दे रहे थे, एक जो इस देश की पहचान बन गया है,

दूसरा जॉब हर मुश्किल घड़ी में इस देश को मोटिवेट करता है। और फिर ये तीसरा और आखिरी गाना जो अपने अंदर की आवाज को झंझोड़ता है। सोचिए, ये तीनों गाने आज के नहीं है, दो दशक से ज्यादा पुराने हैं। फिर भी जब इस जनरेशन को अपनी फीलिंग्स को आवाज देनी थी, इन्होंने कोई नया गाना नहीं ढूंढा, वापस इन्हीं गानों तक लौटाए। एक बार जो गाना आवाज बन गया, उस आवाज को दबाना मुश्किल होता है। हर जनरेशन उन्हीं गानों को अपना लेती है जो उनके इमोशंस को उनसे बेहतर समझ ले। इस हफ्ते मेरा रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक एआर रहमान की वो कॉम्पोजिशन जिसने हर बार एक नई जनरेशन के साथ फिर से जन्म लिया, फिर से उस पीढ़ी की आवाज बनी। टॉप 20 रीवाइंड।

0: ट्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची
2: हेलो
3: हेलो
2: हेलो बहन जी।
3: हाँ जी।
2: ये एक सेकंड ये बहन जी, हम आपके पड़ोस में रहते हैं। ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है। वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है। अगर
3: आप... आपके घर में कोई नहीं है?
2: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं। तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो एक सेकंड।
3: आप अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए जल्दी।
2: नहीं नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ। एक सेकंड। आली है मामा आएंगी, मामा आएंगी। एक सेकंड बहन जी, आप होल्ड करेंगे? एक सेकंड सर। आएंगी मामा, आएंगी, चीजी लाएंगी बेटो, चीजी लाएंगी। नहीं, चुप हो रहा। आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे।
3: नहीं, इसमें डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है।
2: एक सेकंड, इधर आओ। हाँ इधर आओ, देखो मामा आ गई, चीजी लाई। हाँ, डायपर गीला है बहन जी उसका,
3: तो उतार लीजिए।
2: एक सेकंड रुकिए। ये इसके गले में अटक रहा है डायपर। एक सेकंड,
3: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका।
2: अच्छा, ये बेब है। एक सेकंड,
3: देखिए सुसु करा होगा उसने। देखिए,
2: हाँ सुसु करा। चल
3: उतार दीजिए।
2: एक सेकंड, उतार दिया। मैं जी, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ आए जरा। देखो आंटी कर रही है। क्लैपिंग करो। मुझे भी वही याद आ रहा है। नहीं बहन जी, आप सही कह रही हैं। रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया।
3: और मैं पागल हूँ। ओह नो।
2: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: Going home? Make it rewarding with Kalyan Jewelers.
5: Enjoy 0% making charges on select ornaments. Visit Kalyan Jewelers today. Conditions apply.
6: Ja Simran, ja jee le apni zindagi. Ja beta, ja.
7: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन।
10: इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 17।

ईरा में एक ऐसी आवाज होती है जिसके साथ हर नया सिंगर कंपेयर होना शुरू हो जाता है। कभी रफी साहब थे, कभी किशोर कुमार, फिर उदित नारायण, कुमार सानू, सोनू निगम, और अब पिछले डेढ़ दशक से इट इज अरिजीत सिंह। इसलिए जब कॉकटेल 2 के प्रमोशन शुरू हुए और तुझको को स्टेज पर गाने की बारी आई तो अरिजीत तो वहां नहीं थे, लेकिन एक आवाज और थी, एक अलग आवाज, एक सिंगर जो अभी भी अपना सपना जी रहा है। नाम है सोनू इश्तियाक खान, और तुझको को गाने का रंग इनका बिल्कुल अलग था।

0: खूबसूरत। देखिए ये अरिजीत बनने की कोशिश नहीं है, ये एक सिंगर का अपना मौका ढूंढने की कोशिश है। शायद हर बड़े आर्टिस्ट की लेगेसी भी कुछ ऐसी ही होती है, वो सिर्फ अपने गाने नहीं छोड़ता, अपने बाद आने वालों के लिए एक स्टैंडर्ड छोड़ जाता है। कौन जाने आज जिस सिंगर को हम स्टेज पर अरिजीत के गाने गाते हुए देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कल उसके गाने कोई और गा रहा होगा। फिलहाल नंबर 16 पर दी हॉन्टिंगली ब्यूटिफुल जाइए सजना बाय जैस्मिन सैंडलास फ्रॉम धू रंधर।
1: नंबर 16

0: Suren ke saath only on Mirchi. It's hot.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
3: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
4: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC. Stay tuned with Mirchi. The mentalist Suhani Shah live.

0: Going home? Make it rewarding with Kalyan Jewelers.
1: Enjoy 0% making charges on select tournaments. Visit Kalyan Jewelers today. Conditions apply.
2: घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। टीएनसी अप्लाई।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

एक वार्निंग है, इस गाने को अंडर एस्टिमेट मत करना। पहली बार सुनोगे तो अच्छा लगेगा, दूसरी बार सुनोगे तो क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, और तीसरी बार बस फिर ये गाना दिमाग से निकलेगा ही नहीं। और शायद इसलिए इसका नाम भी मदहोश है। टॉक्सिक का ब्रांड न्यू ट्रैक दैट डेब्यूज ऑन द चार्ट्स ऑन नंबर 14। लेकिन इस गाने ने मुझे एक और चीज रियलाइज करवाई। पिछले साल जब पूरा देश ये वाला गाना गा रहा था,

0: हम फहीम अब्दुल्ला की बात कर रहे थे, हम तनिष्क बागची की बात कर रहे थे, लेकिन एक नाम शोर के बीच कहीं दब गया, अरसलान निजामी। पर अगर आप इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन से वाकिफ हैं तो मधोश सुनते ही आप समझ जाओगे ये उसी दुनिया का एक्सटेंशन लगता है, वही फील, वही एटमॉस्फेयर, वही म्यूजिकल डीएनए। और एक बात ने तो सच में दिल जीत लिया यार, फहीम अगर चाहता तो ये गाना खुद गा सकता था, लेकिन उसने सिद्धार्थ बसरूर को ये गाना दे दिया। एक आर्टिस्ट सच में तब और बड़ा बन जाता है जब उसे सिर्फ अपनी आवाज नहीं अपनी कॉम्पोजिशन की भी फिक्र होती है। और यकीन मानिए ये सिर्फ डेब्यू नहीं है, मुझे लगता है मधोश तो बस अभी शुरू हुआ है। लेकिन जो अगला गाना है वो उस फ्रेंचाइज से है जिसका इंतजार 19 सालों से हो रहा था। उस दुनिया में सब जाना चाहते थे, आवारापन की दुनिया। लेकिन पहला गाना उस गहराई तक नहीं ले जा पाया जिसकी शायद सबने उम्मीद की थी। द सॉन्ग दैट साउंड्स ईरली सिमिलर टू सैयारा, दिस इज वे जुनून बाय सुबोध शर्मा, म्यूजिक मिथुन का और लिरिक्स सईद कादरी भाई के। इस हफ्ते टू स्पॉट्स डाउन और नंबर 13।
1: नंबर 13।
2: Good.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: हाल ही में रवि किशन ने जो होम फ्रॉम वर्क की बात छेड़ी है, मुझे ऐसा लगता है कि रवि किशन जेन्युइनली एक फनी इंसान है। तृप्ति डिमरी, आपको क्या लगता है?
4: He is just too funny. Like whatever he says, it's funny. He's कुछ लोग होते हैं ना जिनमें ह्यूमर इनबिल्ट होता है। I think he is one of those people.
3: तृप्ति डिमरी spilling some truth bombs on Mirchi. It's hot.
1: Bollywood bol dal. Bollywood Bollywood Bollywood bol dal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
5: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
6: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
7: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
9: नंबर 12।
10: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

एक लिरिसिस्ट जब खाली कागज के सामने बैठता होगा या होगी तो उनके दिमाग में सबसे पहले गुलजार साहब वाले लफ्ज आते होंगे या शायद जावेद साहब वाली शायरी आती होगी। लेकिन फिर डायरेक्टर बोलता होगा, यार मुझे गाना चाहिए जिसका नाम हो इश्क कमीना, या शायद गाने का नाम होना चाहिए चटनी, और वहीं से असली क्रिएटिविटी शुरू होती होगी। क्योंकि मुश्किल खूबसूरत लफ्ज लिखना नहीं होता, मुश्किल होता है ऐसे लफ्ज को हिट बना देना जिसे किसी ने गाने में इमेजिन ही ना किया हो। सच बताइए, आपने कभी अपने प्यार का इजहार इस तरह किया है?

यार मैंने किसी लड़की को कभी नहीं बोला कि उसको देख के मेरा दिल डिंग डोंग करने लगा है। इनफैक्ट मैंने तो कभी किसी लड़की से ये बोलने की भी हिम्मत नहीं की।

देखिए ना, आज ये वर्ड सुनते ही डिक्शनरी या किचन याद नहीं आता, सीधा गाना याद आता है। शायद यही लिरिसिस्ट की असली जीत होती है। वो सिर्फ गाना नहीं लिखते, वो एक लव्स की आइडेंटिटी ही बदल देते हैं। और अगर ऐसी हिम्मत की बात हो रही है तो फिर एक गाना डेफिनेटली बनता है जिसके टाइटल को सुनकर लोग पहली बारी में शॉक हो गए थे, लेकिन जब गाना सुना तो गाना कल्ट बन गया। मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट ट्रैक भाग, डीके बोस भाग, डेली बेली से अमिताभ भट्टाचार्य जी को मेरा शत शत प्रणाम। स्पेशल रिक्वेस्ट।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: या मिर्ची हेल्पलाइन बताओ क्या प्रॉब्लम है।
1: जब भी मैं मॉल में शॉपिंग करने जाता हूँ एक चीज लेनी होती है पांच लेके आ जाता हूँ, क्या करूँ?
2: ये तो गलत है, अगली बार से एक ही लाना, क्योंकि पांच लेकर पकड़े जाओगे तो मॉल वाले चोर समझकर मारेंगे।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: Number 10.

0: बस यही तो कमाल है हिंदी फिल्म म्यूजिक का। कुछ सेकंड पहले तक आरी आरी जैसे गानों के साथ खून तेजी से दौड़ रहा होता है, आपके अंदर इतना एड्रेनलिन भर जाता है कि लगता है कि दुनिया जीत लोगे, और अगले ही पल अगला ही गाना उसी दिल को धीरे से पकड़ लेता है, और आज कुछ ऐसा ही होने वाला है। पिछले हफ्ते मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि आवारापन का वो गाना जिसका इंतजार सिर्फ फिल्म के फैंस नहीं पूरा म्यूजिक सर्किट कर रहा था, इस हफ्ते वो काउंटडाउन पर जरूर डेब्यू करेगा। तो बस प्रॉमिस पूरा करने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले आई नीड टू से दिस दैट आई लव अमाल मलिक। He's like my younger brother, और अमाल की कही हुई एक बात मेड मी फील सो सो प्राउड अबाउट हिम।
1: I'm the SRK of music and romance, who I believe another who soul travels just like me is Mithun. I think an art like mere senior hai, but he's the only one I feel. And I'm har jagah sab bolta ho, and egoistically nahi ki I'm the SRK of music and romance. Main hu, so I believe the best. But someone who always hum log mein ek yani competition nahi rahega, but I think someone who touches my soul on that level is him. Wo utni purity se he also works. So we are the only two people who are trying to do in our generation purest work.
0: यार कितनी खूबसूरत बात है। हर कंपोजर का अपना एक सिग्नेचर होता है, अपनी एक मेलोडी होती है, अपना एक इमोशन होता है, और जब एक कंपोजर दूसरे कंपोजर की सोच को इतनी इज्जत दे तो समझ लीजिए म्यूजिक सिर्फ कंपटीशन नहीं कॉन्वर्सेशन बन गया है, और इस कॉन्वर्सेशन का नया चैप्टर आज ऑफिशियली शुरू होता है ऑन द चार्ट्स, डेब्यूइंग स्ट्रेट ऑन नंबर 9। रश्मि विराग के लव्स, अमाल मलिक की कॉम्पोजिशन और अरिजीत सिंह की आवाज, ये आवारापन नंबर।

0: Kulen ke saath. Only on Mirchi. It's hot. Mirchi. Iska bana, uska bana, sabka bana. Kya bana? Murga, murga. Nabiyat wala murga.
1: Mirchi murga. हेलो
2: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
1: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
2: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
1: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
2: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
1: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
2: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
1: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
2: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
1: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
2: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
1: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
2: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
1: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
2: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
1: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
2: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है, मैं आप पहला रहा हूँ।
1: मैं बाद में मिलूंगा आपसे, यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
2: किसकी डेथ हो गई सर?
1: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
2: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
1: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसे हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ पर रहे हो?
2: मैं कहाँ पर हूँ,
1: सॉरी आप अभी कहाँ पर हो?
2: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
1: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, परेशान हूँ मैं।
2: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
1: यार।
2: थैंक यू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Going home? Make it rewarding with Kalyan Jewelers.
5: Enjoy 0% making charges on select tournaments. Visit Kalyan Jewelers today. Conditions apply.
6: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
3: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.
0: Suriya ke saath, only on Mirchi. It's hot. Number 8.

0: टॉक्सिक का बस देख के एक बात तो तय है, अगस्त बॉलीवुड के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल महीना नहीं होने वाला है। एक तरफ यश 4 साल बाद KGF के बाद स्क्रीन पर वापस आ रहे हैं, दूसरी तरफ 19 साल बाद आवारापन अपनी कहानी आगे बढ़ा रही है। और फिर एक ऐसी फिल्म है जिसका ट्रेलर देखते ही मुझे एक बात रियलाइज हुई, बंटवारा 1947 की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी स्टोरी या उसका स्केल नहीं है, उसकी पार्टनरशिप है। आमिर खान एज अ प्रोड्यूसर, ए आर रहमान और जावेद साहब, द लगान, द जोधा अकबर डुओ, उनका कॉम्बिनेशन फिर एक साथ। लेकिन जिस रियूनियन ने मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट किया है वो है राजकुमार संतोषी और सनी देओल का रियूनियन। सनी देओल की सबसे आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस याद कीजिए, घायल, दामिनी, घातक, तीनों के पीछे एक ही डायरेक्टर थे, राजकुमार संतोषी। और ये तीनों फिल्में सिर्फ हिट्स नहीं थी, ये वो फिल्में थी जिन्होंने सनी देओल को सनी देओल बनाया। अरे यार, बॉर्डर और गदर तो काफी बाद में आए थी, और जब भी ये दोनों साथ आते हैं फिल्म तो हमेशा हिट ही मिलती है, लेकिन सनी देओल का एक नया वर्जन भी मिलता है।
1: आप लोगों ने आई एम श्योर घायल देखी है, दामनी देखी है, घातक देखी है, और अब बंटवारा आ रही है। राज और मेरी कॉम्बिनेशन हमेशा ऐसी रही है जहाँ पर पता नहीं कैसे हम कुछ भी, राज मुझे कुछ बात करेगा और मैं, बात सही होती है, कहानी अच्छी होती है, तो मैं तुरंत, हम लोगों की वेवलेंथ सेम है, वी गेट एक्साइटेड और फिर हम पूरी कोशिश करते हैं एक दूसरे को चैलेंज करने की व्हाइल वी आर वर्किंग। और सब फिल्में हमेशा एक समाज के साथ जुड़ी होती हैं, इसलिए हमारी कहानियाँ हमेशा शुद्ध होती हैं मेरे हिसाब से, और वो हर इंसान जो देखता है उसके अंदर उसको कुछ इमोशन के साथ कनेक्ट हो जाता है, उसे अपनापन दिखता है। That's a kind of cinema I love to do and have been doing.
0: बस इसलिए बंटवारा 1947 का इंतजार सिर्फ एक और फिल्म का इंतजार नहीं लगता, ऐसा लगता है कि हिंदी सिनेमा की एक लेजेंडरी जोड़ी फिर से अपना जादू दिखाने आ रही है। But right now, जादू है गुरु रंधावा का, जिनका गाना चार्ट्स पर नंबर 7 पर है इस हफ्ते। कहे फ्रॉम धमाल 4 इज हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20।
2: नंबर 7।

0: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
3: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC. Stay tuned with Mirchi.
5: Going home? Make it rewarding with Kalyan Jewelers.
6: Enjoy 0% making charges on select tournaments. Visit Kalyan Jewelers today. Conditions apply.
7: अरे करण अर्जुन आमिर शाहरुख ऋतिक अक्षय इमरान सबके गाने आएंगे दीदी।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM Mirchi 1.
0: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
10: Number 6.

शरारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पता क्या है? मधुबंती बागची और जैस्मिन सैंडलर्स की आवाज नहीं, उसका मुखड़ा भी नहीं। इस गाने की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्ट्रेंथ है, उसके वो पहले कुछ सेकंड्स। जब गाना बस शुरू होता है और आपका दिमाग तुरंत बोलता है, ओह यस, दिस इज शरारत।

Am I right or am I right? यार मुझे लगता है कि म्यूजिक की दुनिया चुपचाप बदल रही है। आज गाने का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा उसका हुक बन गया है, क्योंकि वही रील्स पर और शॉर्ट्स पर ट्रेंड करता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था, द कंपोजर्स गाने में सबसे ज्यादा प्यार उसकी शुरुआत पर खर्च करते थे। एक इंट्रो जो बिना एक भी लफ्ज बोले अपनी पहचान बना लेता था।

बस इतना ही, ना वोकल्स ना लिरिक्स। फिर भी अगर आप 2008 में थे तो आपको पता था हाथू है। शायद इसलिए कुछ इंट्रोस सिर्फ म्यूजिक नहीं होते, वो मेमोरी के फिंगरप्रिंट्स बन जाते हैं। एक बार सुन लो और सालों बाद भी इसे पहचानने में कभी गलती नहीं होगी। वैसे ही इस हफ्ते नंबर 4 पर जो गाना है उसकी पहचान भी उसका इंट्रो ही था, चुनरी चुनरी। लेकिन जिस गाने की हम इतनी बात कर चुके हैं, जिस गाने का मैं इतना जिक्र कर चुका हूं, दैट इज गोइंग टू बी माई पिक ऑफ द वीक। जन्नत की पूरी एल्बम में शायद सबसे अंडर रेटेड ट्रैक, लेकिन मेरे लिए सबसे प्यारा। वही इंट्रो जो दिल पर अब भी दस्तक दे रहा है, सॉन्ग बाय माई ऑल टाइम फेवरेट सिंगर के प्रीतम दा की धुन। हाँ तू है।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
2: पर दीदी, आवर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: नंबर 3।

और दूसरी हिट फिल्म का सीक्वल आ चुका है वेलकम धमाल दे दे प्यार दे. देन यू आल्सो गॉट सम कल्ट क्लासिक्स लाइक बॉर्डर एंड गदर. एंड लगता है कि बॉलीवुड को एक ही चीज का नशा है एंड दैट इज फ्रेंचाइजेस. लेकिन इतने सारे सीक्वल्स के बीच एक नाम है जिसकी कमी हर साल और ज्यादा महसूस होती है और छुपती है. धूम जैसे फिल्म कहां थी, ये स्टाइल था, एटीट्यूड था. पहली धूम में जॉन अब्राहम ने बाइक्स को कूल नहीं बनाया, उन्हें एस्पिरेशनल बना दिया. सबको एक सुपर बाइक चाहिए थी. फिर आए ऋतिक रोशन और धूम 2 ने फ्रेंचाइज को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया. डूड ऋतिक नेवर लुक्ड एज सेक्सी एज ही डिड इन धूम 2. एंड उसके बाद 7 साल बाद सिर्फ खामोशी. यस, आमिर खान की धूम 3 आई जरूर, लेकिन वो दीवानगी वापस नहीं आई. और हाल फिलहाल आप सुन रहे होंगे कि इस सीरीज को रीबूट करने की प्लानिंग चल रही है. रणबीर कपूर का नाम डिस्कस हो रहा है, फिर ये पता लगता है दैट स्क्रिप्ट की वजह से रणबीर भी एग्जिट कर गए. सच कहूं, मुझे नए विलन की बिल्कुल फिक्र नहीं है. मुझे सिर्फ इतना लगता है कि जिस फ्रेंचाइज ने हिंदी सिनेमा को इतना स्वैग और इतना कूल दिया, उसे सिर्फ कमबैक नहीं, ब्लॉकबस्टर कमबैक मिलना चाहिए. सो YRF, टेक योर टाइम, जितना वक्त लेना है आप ले लो, बस धूम को स्पाई यूनिवर्स वाले रास्ते ना ले जाना. तब तक YRF का दिया एक और सुपरस्टार जिसने शुरुआत की थी विद बैंड बाजा बारात, आज बॉक्स ऑफिस पर सबकी बैंड बजा रहा है. एक बार फिर माय मोस्ट फेवरेट रोमांटिक सॉन्ग ऑफ लास्ट ईयर, इट्स स्टिल नंबर 1. दिस इज गहरा हुआ स्टारिंग रणवीर धुरंधर सिंह. नंबर 1.

0: एक और हफ्ता और गहरा हुआ फिर से नंबर वन। सच कहूं लगता ही नहीं कि धुरंधर का मैजिक बिल्कुल फेड हुआ है। इस एपिसोड में वैसे मुझे बहुत मजा आया, मेमोरीज की बात की, नई ट्यून्स की बात की और उन कहानियों की भी जो सिर्फ फिल्मों में नहीं हम सबके अंदर रहती हैं। आई होप यू लाइक द एपिसोड एज वेल। अगली बार फिर मिलेंगे हियर ऑन द मिर्ची टॉक 20। अंटिल देन सरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
3: जी बिल्कुल बताइए सवाल क्या है।
2: मैं जब भी आटा गूंथती हूँ तो आटा मेरे हाथ में चिपक जाता है, क्या करूँ?
3: हाथ में चिपक जाता है सिंपल तो है, क्या क्या करूँ? पैर से आटा गूंथ, हाथ में नहीं चिपकेगा।

pinch and the thumb for the first of the month. तो अगर आप कभी कोई दोस्त यार आपके साथ है तो उसको एक चुटकी काटो, ऐसे पंच मारो और बोलो पिंच एंड द थंब फॉर द फर्स्ट ऑफ द मंथ। बिल्कुल मिलाकर 1 अगस्त यानी कि 8वें महीने में हम एंटर कर चुके हैं और 1 अगस्त की तारीख, गर्मी वैसे ही बरकरार है हमारे कतर में, पर एक बात याद रखिए हमारी जिंदगी में ना गर्म जोशी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए, हमारे एनर्जी भरपूर रहनी चाहिए, हमारे अंदर वो जोश होना चाहिए कि हम दुनिया में जो चाहेंगे वो हासिल कर दिखाएंगे। फिलहाल सूरज चाचू ने अपनी गर्मी का तापमान हाई कर रखा है, हमें अपने अंदर जोश का जो उफान है उसको बनाए रखना। शुरुआत करते हैं शाम शानदार की, हफ्ते का बेस्ट लेकर आया हूं जहां आपको बताऊंगा डेट फेस्टिवल में आज आपके लिए क्या क्या खास है, इसके अलावा कतर टॉय फेस्टिवल कैसे आगे बढ़ा दिया गया है आपके लिए 4 अगस्त तक, और साथ ही साथ कतर के कोने कोने में इस पूरे हफ्ते क्या क्या हुआ, ये सब कुछ ओरियन 89.6 मिर्ची 1 हबीबी हरारा कतर, इट्स हॉट।

0: Milci. Iska bana, puska bana, saka bana. Rabana. Burka, burka. Na vid bala burka.
1: Milci, burka. Hello.
2: Hello, Mr. Gotham.
1: Kaun bol raha
2: hai? Sir, main actually aaj se rahe the request kar raha hai. Main so aaj suna hai fir wo singing winging sikhate hai sir. To sir gaane ka thoda shauk hai. Main jo gaane gaata hu na wo sir thode different hote hain.
1: Aise kaise bol sakta hu jab tak aapko sunayenge nahi.
2: Pehle mohalle mein hamare snake nikla tha. तो स्नेक का ही घुस गया था तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर हर तरह के गाने खा लेता हूँ लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में सर नागिन क्या है सर नगीना फिल्म देखी आपने नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने
1: सर कुछ गा के
2: सुनाएगा वही सर नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है ना कोंडा आपने ना कोंडा फिल्म देखी है
1: अरे काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको
2: भेज दो वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को
1: अनाकोंडा में कौन से गाने
2: सर वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज़ वो उसके अच्छे लगते हैं उसने काम किया अनाकोंडा में यही बात है मेरे लिए एक पेशकश कर रहा हूँ मन डोले मेरा मन डोले मेरे गले का गया गुजार रे कौन बताए बांसुरिया
1: क्या सर मत
2: सर बिच्छू वाला ये बिच्छू मुझे कहाँ खाएगा
1: सुन ले बात
2: मेरी बात
1: सुन पहले बात सुन
2: हाँ सर
1: और बंद करिए बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
2: है सर बोलिए
1: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते समझ गया ना तू बात
2: जी सर
1: और जिसने तुझे नंबर दिया है क्या किसने नंबर दिया था तुझे
3: मिस्टर गौतम इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं बहुत मुश्किल से मिलता है मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता आप रेडियो मिर्ची पे हैं दिल्ली आपको सुन रही है छोटा सा मजाक किया है मुर्गा बन गया आपका

0: Nate के साथ only on मिर्ची. It's hot.
1: Yep, Jack.
2: Going home? Make it rewarding with Kalyan Jewelers.
3: Enjoy 0% making charges on select ornaments. Visit Kalyan Jewelers today. Conditions apply.
4: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
6: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

नहीं, ये वाला काम तो मैंने अपनी मम्मी से बहुत सीखा है। नहीं, मेरी फटी जीन्स को मम्मी झोला बना देती थी, उसमें हम सब्जी लेके आ जाते थे। लेकिन फिलहाल हमारे कतर में ये काम बहुत खूबसूरती से अशगाल ने किया है। #974974 हम आपको बता दें, पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी अशगाल ने एक तरह से अपने सारे पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिए और अपनी एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट की पॉलिसी बनाई थी कि जितना भी वेस्ट होगा, जो कि मिलियंस ऑफ टन्स होता है कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन का, सीएनडी का सारा वेस्ट वो रियूज करेंगे। और ऐसा कर नेशनल विजन 2030 को अलाइन करते हुए 300,000 टन इस्तेमाल किया है। यस, 300,000 tons of waste of construction and demolition को use किया गया। इसमें 80,000 ton of wood waste था, 7,000 tons of plastic waste, 3,000 tons of paper waste and 1,000 tons of scrap metal। इन सबको recycling facilities में भेजकर वापस से use किया, ताकि कतर का वो National Vision 2030 का जो target है कि हम लगातार चीजों को reuse करें, recycle कर उसको use करते रहे, उसे पूरा करें। इतना ही नहीं, after this 800,000 ऑफ फूड वेस्ट को भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट, बोले तो खाद बना दिया, ताकि कतर में ही उसका इस्तेमाल कर और अच्छे क्रॉप ग्रोइंग कराई जा सके। बताइए, कोई सोचता है अपने मुल्क में इतनी सारी बातें, लेकिन कतर हर चीज के बारे में सोचता है और कैसे ट्रैश से कैश बनाया जाए अपनी इकोनॉमी में, उसे बूस्ट किया जाए, इसका इस्तेमाल किया। इसके लिए जोरदार तालियां अशगाल के लिए। एंड मैं कहता हूं, कतर डिजर्व्स द बेस्ट, बट अशगाल के लिए तालियां डिजर्व्स द बेस्ट। एंड मस्ट मोला गौरव थैंक यू कहेगा उस पूरी टीम को जो इस तरह का काम करती है, ताकि कतर में रीयूज होकर वेस्ट का जो संख्या बल है वो कम होता रहे। 89.6 मिर्ची वन, आप अपनी वही पुरानी चीजों को फेंकना बंद कीजिए, आप भी ऐसे यूज कीजिए। चार डब्बे आ जाते, परेशान जाते, क्या करें क्या करें, फेंक देते। नहीं फेंकना है, यूज करो मिर्ची। अच्छा।

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
2: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
3: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC. Stay tuned with Mirchi. The mentalist Suhani Shah.

0: दोस्ती का ही कुछ सुले मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
1: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
2: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
3: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: भाई आज की दुनिया में गंदगी तो सब कर देते हैं, लेकिन सफाई करने वाले हीरोज बहुत कम दिखाई देते हैं।
1: मस्त मौला गौरव।
0: और उन्हीं हीरोज की हेल्थ का ध्यान रखने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज सामने आई है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ।
2: #974
0: गौरव बता दे कि जो लोग हमारे कथर को क्लीन, नीट एंड शाइन बनाकर हमेशा रखते हैं, हमें नजर आते हैं अपने येलो कपड़ों में, अपने ऑरेंज कपड़ों में, वो सारे के सारे लोगों के लिए एक ऑसम न्यूज आई है। यस, कतर के मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी के जनरल क्लीनलीनेस डिपार्टमेंट ने अपना एक डेडिकेटेड मेडिकल क्लिनिक जो है वो शुरू किया है। 3200 से ज्यादा सैनिटेशन वर्कर्स को यहां पर मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी। यस, ये क्लिनिक डिपार्टमेंट के प्रमाइसिस के अंदर ही बनाया जा रहा है। यहाँ पर अब इनको फास्ट मेडिकल सपोर्ट मिलेगा, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज इनको यही मिल जाएंगी और इनका रेगुलर चेकअप भी अब इनके खुद की मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर ही हो जाएगा। वेल, कुल मिलाकर इतने कहेंगे कि वो वर्कर्स जो हमारे कतर के कोने कोने को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखते हैं, उनके वर्कर्स की सेफ्टी और हेल्थ का ध्यान भी तो कतर की टॉप प्रायोरिटी है। और इसीलिए बाकायदा ये एक जबरदस्त मूव लिया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी की बिल्डिंग के अंदर ही एक बाकायदा इनके लिए क्लिनिक का सेटअप कर दिया गया है। ये मेडिकल क्लिनिक 3200 सैनिटेशन वर्कर्स को अपनी तरह से मेडिकल सपोर्ट पहुंचाएगी। एक शानदार मुहिम है ये। वो लोग जो हमारे लिए हमारे कतर के कोने कोने को साफ सुथरा रखते हैं, उनके लिए ये सोच के लिए हुकूमत को दिल से सलाम। एंड हमारा भी फर्ज बनता है कि अगली बार हम जब सड़क पर निकलें कोई पैकेट ऐसे छोड़ के ना आए, बल्कि उसको डस्टबिन में डालें ताकि उनका थोड़ा काम हम कम कर पाएं। वो क्लीनलीनेस वर्कर्स, वो सैनिटेशन वर्कर्स जो हमारे कतर में सफाई का काम करते हैं, आप उनके लिए ये छोटा सा काम जरूर कीजिएगा। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कुणाल खेमू, एज एन एक्टर आपको डायलॉग्स याद रखने पड़ते हैं, आपको स्क्रीन प्ले याद रखना पड़ता है. एज ए ह्यूमन बीइंग आपको आपके सपने याद रहते हैं?
3: मुझे एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम, आई डोंट रिमेंबर माय ड्रीम्स. मुझे अपने सपने याद नहीं रहते, तो आई थिंक विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि मुझे नाइटमेयर्स भी याद नहीं रहते. तो आई कैन मैं एक नई शुरुआत करता हूँ हर दिन की.
2: क्लासिक फॉर्मूला है कुणाल खेमू, काश हम भी ऐसा कर पाते, हर दिन की नई शुरुआत. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के. एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम. इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC. स्टे ट्यून्ड विद मिर्ची. द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव.

0: सूरज टचू कितने भी दुख कर ले सितम, पानी पी के सहेंगे हम।
1: मस्त मौला गौरव।
0: मतलब जुलाई बीत गई, अगस्त आ गया, तो भी आपको एकदम जरा सी भी दया नहीं आ रही।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: वेदर अपडेट।
0: दिन का मैक्सिमम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस वाली फीलिंग देके जा रहा है, और दिन का मिनिमम भी अराउंड 35 के करीब आएगा। दोस्तों बस इतना ही कहना चाहता हूँ, हमने आपने जो सोचा नहीं उससे भी ज्यादा गर्मी वाली फीलिंग पहले अगस्त को भी आ रही है। बस एक ही चीज कहूंगा, पानी पीते रहिए, बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाइए। किसी भी मजदूर भाई को अगर ओपन में काम करते देख रहे तो उसे याद दिलाइए कि 10 से 3:30 उसको काम बाहर करना नहीं है, आराम करना है, इस उम्मीद में कि आप और हम इस गर्मी को झेल झेल के फिर से ठंडी की तरफ बढ़ेंगे। मस्त मौला गौरव आगे बढ़ता है। पानी का एक ग्लास पीजिए या फिर लस्सी पीजिए, छक के अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। मिर्ची सुनते रहिए। फिलहाल तो आंसुओं का दरिया बह जाता है जब गर्म गाड़ी में हैंडल पकड़ो या सीट पे बैठो। मिर्ची थॉट।

0: बोल दामिनी बोल। बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
1: वो ना, वो पराठे गरम करते वक्त मैं कितना भी ध्यान रखूं, वो जल ही जाते हैं। और मेरी मम्मी इतना गुस्सा करती है, मैं क्या करूं?
0: क्या करूं का क्या मतलब है? जलने वाले तो चलेंगे, तू मम्मी को बोल के किचन में ना खड़ी रहे। सिंपल है।
2: खोपड़ी तोड़ दे।

0: शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का इट्स हॉट मिर्ची फ्रेश माल
1: एक्सप्लोसिव वाइब और पावर पैक्ड एनर्जी का डोज तब

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: आपके साथ भी होता ना, क्या गिफ्ट लेकर जाएं कि घर वाले खुश हो जाएं?
2: मस्त मौला गौरव।
1: मेरे साथ भी होता है यार, हमें क्या परफेक्ट गिफ्ट है जो लेकर जाना है वो समझ नहीं आता, लेकिन फिर ऐसे में जब एक चीज समझ में आती है तो वो सबको पसंद भी आती है और वहां वाले कहते हैं अरे भाई गल्फ से आ रहा है इसलिए लेकर आ रहा है। फिलहाल बात कर रहा हूं मैं खजूर की, जिसका 11th डेट फेस्टिवल हमारे कतर में चल रहा है। कतर के 11वें लोकल डेट फेस्टिवल में अब तक 20,000 विजिटर्स पहुंच चुके हैं और लगभग 41 टन लोकली ग्रोन डेट्स जो हैं पहले 3 दिन में ही बिक गई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने बता दिया है कि अलग अलग वैरायटी बिक रही हैं। सबसे ज्यादा जो है वो है हमारे कतर के वो वैरायटी जिसे हम खलास कहते हैं, यस खलास वैरायटी जो कि 17 टन बिकी है। इसके अलावा सीशी, खनाजी ये सब भी बिक रही है एंड बरी ये भी बिक रही है। कुल मिलाकर अलग अलग वैरायटी को अगर आप एक जगह देखना चाहते हैं तो आपको मुझे लगता है कि कतर जिस तरह से सेल्फ सफिशिएंट हो रहा है अपने यहां जितने डेट्स की खपत है उसको ग्रो करने में, उसका 75% उसने अचीव कर लिया है। 26,000 टन एनुअली हम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा डेट्स की जो प्रोडक्शन है वो इजिप्ट में है। यस, मिस्र नंबर 1 कंट्री है। 1.87 मिलियन टन डेट वहां हर साल मिलता है। अगर इसकी बात करें सऊदी अरेबिया, उसके बाद नंबर 2 पर 1.64 मिलियन टन वहां उगाया जाता है एंड इसी डेट से आप पूरी दुनिया में डेट्स की अलग अलग चीजें पाते हैं। हमारे कतर में इसकी अलग अलग वैरायटी है और मुझे डेट्स के शेक्स बहुत पसंद आते हैं और मैं तो कहता हूँ हजूर कतर में हो तो जरूर खाओ खजूर, क्योंकि ये आपको एनर्जी प्रदान करता ही करता है। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabara, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
1: हेलो।
2: हाय शिवानी।
1: हाय।
2: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
1: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
2: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
1: समाचार?
2: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
1: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
2: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
1: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
2: अच्छा।
1: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
2: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा।
1: आपको लेनी है क्या?
2: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा है ना,
1: हाँ?
2: इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
1: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद लेना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ।
2: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
1: आप सिर्फ
2: मेरी बात
1: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
2: ये सिर्फ 3। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
1: सिर पे करवा ले
2: शिवानी।
1: हेलो,
2: आप नहीं आ सकती, मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
1: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद ही कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
2: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो प्लीज, फोन करना, शिवानी मेरी बात सुनो।
1: नहीं
2: नहीं, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
1: कुकड़ुकु
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स पजाक।
3: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
0: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा। उत्तराखंड का नंबर 1 रेडियो स्टेशन, 89.6 FM, मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: दो ग्रेस मार्क्स की कीमत तुम क्या समझो चुन्नी बाबू।
1: मस्त मौला गौरव।
0: फेल होते हुए बच्चे के लिए समाधान है वो। वो अपने माँ बाप के सामने महान है अगर उसे ये दो ग्रेस मार्क्स से किसी सब्जेक्ट में पास होने का मौका मिल जा रहा है तो। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। क्लास 11th में अकाउंट्स में मैं 38 मार्क्स पे था। मैं कह रहा था हाफी एलिज में कम से कम फेल का वो लाल स्याही नहीं दिखना है। सर प्लीज दो मार्क्स किसी और अच्छे से देखिए सर, कहीं मिल जाएगा। और जैसे ही सर ने वो दो मार्क्स बढ़ाए मेरे एक सवाल के जवाब में कि चलो ठीक है इसमें मैं तुम्हें दो मार्क्स और दे देता हूँ, बस मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। सोचिए मैं ऐसी छोटी छोटी चीजों के बढ़ने पर खुश हो जाता था। और यहाँ तो कतर टॉय फेस्टिवल 4 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया गया है। Yes, वो बच्चे जो अभी तक नहीं जा पाए थे कतर टॉय फेस्टिवल में वहां भारी भीड़ को देखते हुए, अब उनके लिए एक हफ्ते का एक्सटेंशन आ गया। अगर ये कहे तो गलत नहीं होगा, 31 जुलाई को खत्म होने जा रहा था, अब 4 अगस्त तक चलेगा। Yes, जहां पर अब फैमिली के पास मौका है कि अब कोई बहाना मत बनाइए कि अरे खत्म होने वाला हम तो जा नहीं पाए। अब जाइए DECC दोहा एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में जहां बच्चों को सेलिब्रेट किया जा रहा है। एंड हमारे अंदर का बच्चा भी जाग जाए तो क्या बुराई है यार। तो जरूर जाइए बच्चों के इस जोन में जहां पर स्टूडियोज, इन्फ्लेटेबल्स, यंग एडल्ट किड्स एंड प्रीस्कूल जोन्स बने हुए हैं, जहां पर बच्चे जाकर मेन स्टेज पर भी ढेर सारा एंटरटेनमेंट देख सकते हैं। कतर टॉय फेस्टिवल हर साल बड़ा होता जा रहा है, एक फैमिली फोकस एंटरटेनमेंट पूरा प्रोग्राम है जो पूरे एक महीने तक हमारे कतर में रौनक लगाए रखा है। और इस बार इसका एक्सटेंशन हुआ है तो मुझे लगता है यह मौका आपको मिला है। अगर अभी तक नहीं जा पाए थे तो होकर आइए, 4 अगस्त तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। एंड आप क्या जानो बच्चे खिलौनों से कितना प्यार करते हैं, मुझसे पूछो। मैं बचपन में जो खिलौना मिलता था ना उसे ऊपर छत पे से ले जाके नीचे फेंकता था कि देखू तो कितना मजबूत बना है। 89.6 मिर्ची 1 बड़ा डिस्ट्रॉयर टाइप का बच्चा था मैं। इट्स हॉट।

किसी भी मुल्क की तरक्की का बेहतरी का पैमाना सिर्फ वहाँ की बड़ी बिल्डिंग्स, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि वहाँ काम करने का कैसा माहौल होता है इस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कतर दुनिया में इस मामले में नंबर 2 की पोजीशन पर। #974 कतर की वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट जिसे हम कह सकते हैं, लेटेस्ट IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयर बुक की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कतर लेबर मार्केट इंडेक्स में दुनिया में सेकेंड रैंक की पोजीशन हासिल कर ली है। यस, क्योंकि ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, मेरा ये मानना है कि नंबर 2 की पोजीशन इस बात का प्रूफ है कि कतर किस तरह से पूरी दुनिया के टैलेंट को अट्रैक्ट करता है और रिटेन करने के लिए, मतलब उनको अपने पास रखने के लिए लगातार बेहतरी कर रहा होता है, अपने वर्क एटमॉस्फेयर इतना अच्छा बना रहा होता है, उनकी इकोनॉमी को कैसे अच्छा करें, उनके लेबर लॉस को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर लगातार काम कर रहा है कतर। और एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज ने ही कतर के इस सेकेंड पोजीशन में इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले किया और नेशनल विजन 2030 को अलाइन करते हुए सारे गोल्स को अचीव करता जा रहा है। और ये इस बात का प्रूफ है नंबर 2 पर आना कि कतर लेबर मार्केट इंडेक्स ने दुनिया में ये बता दिया है कि भाई वाकई में क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर बात की जाए सभी लेबर्स की तो बेहतरीन है हमारे कतर में। और अगर आप कतर में रहते हैं और यहां आप काम कर रहे हैं तो यू शुड ऑल्सो फील प्राउड कि आप दुनिया के दूसरे सबसे अच्छे लेबर मार्केट में काम कर रहे हैं, जहां पर आपके लिए बहुत सारी बेहतरी का फॉर्मूला यूज किया जा रहा है और कैसे आपकी लाइफ बेटर से बेहतर बेहतर से बेहतरीन बने इस पर काम हो रहा है। थैंक यू टू द हुकूमत ऑफ कतर जो लगातार इस पे काम कर रही है, सारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से लेकर बाकी सारी मिनिस्ट्रीज को भी दिल से थैंक यू जो हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए हर वक्त हमारे ही बारे में सोच रही होती है और काम कर रही होती है। 89.6 मिर्ची वन, इस बात पे तो खुद पैसे खरीद के कुनाफा खाने का मन कर रहा है, चलिए आज खा लेंगे मिर्ची सॉरी।

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं।
2: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
3: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC. Stay tuned with Mirchi. The mentalist Suhani Shah.

0: Papa John's, better ingredients, better pizza.
1: Restaurant partner, Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues today. Printing and advertising partner, Brand Arts.
2: Visual media partner, Rehab Media.
1: Production partner, Symphony.
3: अरे यार, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
4: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से।
3: योर स्पेशल ऑफर?
4: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है। ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट जो मुझे एक्चुअली चाहिए।
3: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
4: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है।
3: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझो।
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आलिया, आपकी मम्मी सोनी राजदान बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राजी के सेट पे वर यू नर्वस और एक्साइटेड टू वर्क अलोंग विद योर मॉम, व्हाट वाज द फीलिंग?
2: यू नो आई वाज वेरी नर्वस, क्योंकि पहले तो मम्मी भी है, पर नंबर वन फर्स्ट माय को एक्टर ऑन सेट, वो मेरी पहली को एक्टर है, पहली मम्मी नहीं बन सकती, तो मैं नर्वस थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो नर्वस है तो मैं ज्यादा नर्वस हो जाऊंगी, अगर उनको लाइनें शायद नहीं आते हैं तो मैं ऐसा कहूंगी कि उनको नहीं आ रहा है, तो आई वाज लाइक मुझे ऐसा लगता है मैं दो लोगों के लिए एक्टिंग कर रही हूं, यू नो, मतलब वो पहली बार सेट पे आई, पर तब
1: आलिया वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं। चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
4: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार बार बार। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

वैसे आप तो गर्मी का बहाना करके बैठे हैं, लेकिन हमारे कतर के कई सारे मॉल्स ने ठाना है कि गर्मी का बहाना नहीं बनाने देंगे, लोगों को फिट एंड फाइन जरूर रखेंगे। और इसी को लेकर फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर कतर में चल रहा है कतर स्पोर्ट्स फॉर ऑल फेडरेशन द्वारा स्टेप्स चैलेंज इन मॉल्स। यस, एक इनिशिएटिव है जो कि हमारे पूरे कतर की कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं उनको इंकरेज किया जाए कि वो अपनी वॉकिंग हैबिट को बिल्कुल ना बदले। वेदर आउटसाइड भले ही काफी ज्यादा गर्म वाला है, लेकिन एटलीस्ट मॉल के अंदर ही सही 5000 स्टेप्स डेली उन्हें लेनी चाहिए। और अलग अलग मॉल्स में ये अंटिल 31st ऑफ अगस्त कंटिन्यू कर रहा है। अगर आप जाते हैं किसी भी वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग मॉल्स में तो आपको कोई रोकेगा भी नहीं, आप कहिएगा कतर स्पोर्ट्स फॉर ऑल फेडरेशन ने बोला है, हम उसी के चक्कर में आए हैं, 5000 स्टेप हमें पूरा करने दो। वेल, मैं बता दूं दुनिया में बहुत सारे मॉल्स में आप जाके विंडो शॉपिंग करते हैं, लेकिन हमारे कतर में विंडो शॉपिंग भी नहीं करने की जरूरत है, आराम से वॉकिंग कीजिए, कोई आपसे कुछ पूछेगा भी नहीं। इसी उम्मीद में कि आप मॉल में जाएंगे, वॉक करेंगे और अपना 5000 स्टेप तो एटलीस्ट कंटिन्यू करेंगे। मस्त मॉल और ले रहा अलविदा, लौटेगा एक बार फिर से सैटरडे की शाम शानदार में ढेर सारी बातों की लेकर बात, एंड क्या हुआ पूरे हफ्ते खास ये सब कुछ बताएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप खजूर चखने हजूर जरूर जाइएगा कल ईस्टर्न स्क्वायर चौक वाकिफ में, वीकेंड पर टाइमिंग बढ़ जाएगी, फ्राइडे सैटरडे ये आपको लेट नाइट 10 बजे तक मिलने वाला है। इस उम्मीद में कि कतर टॉय फेस्टिवल में बच्चे जाएंगे, आप ईस्टर्न स्क्वायर चौक वाकिफ में खजूर खरीद के आएंगे, मस्त मॉल और गौरव हबीबी ले रहा है। मां सलाम तथा बाय, लौटेंगे सैटरडे, तब तक के लिए हबीबी मिर्ची गुल्लक।

गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC। स्टे ट्यून्ड विद मिर्ची द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप काउंटडाउन की। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। ये वो शो है जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक। सम स्पेशल शाउट आउट्स, ऑल दैट एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10। पिछले हफ्ते से एक पोजिशन नीचे गिरा ये गाना, फीचरिंग ज़ारा खान एंड स्केल्स। गाने का नाम है मूव बॉडी। दो हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। काउंटडाउन की शुरुआत With Move Body on Gana number 10. At RJ Kanega on Instagram par koi gana share karna, koi baatein batani ho, bindas hit me up. Stay tuned for the full countdown. This is Move Body playing right next for you only on Gana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanega. Enjoy.
2: Number 10.

0: बहुत कुछ हुआ, क्या हुआ पता नहीं। ज़ारा खान का गाना दैट वाज मूव बॉडी दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। ये गाना जब इस काउंटडाउन से बाहर भी हो जाएगा तो शायद याद नहीं रहेगा, बिकॉज इट डिड नॉट मेक मी फील एनीथिंग एंड फीलिंग इज एवरीथिंग।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: आई सेड व्हाट आई सेड। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। दिस शो इज अबाउट द सॉन्ग्स व्हिच मेक यू फील समथिंग। पॉप सॉन्ग्स जो आर्टिस्ट अपनी आजादी से अपनी कहानी सुनाने के लिए लिखते हैं। किसी बड़ी फिल्म, निर्देशक, एक्टर, एक्ट्रेस के लिए गाने नहीं बनते हैं, पर हर तरह के गाने होते हैं। कुछ मासी एंड कुछ ऐसे गाने जो शायद इतने बड़े स्केल पे नहीं फटते, लेकिन जितने लोग उन्हें सुनते हैं वो कुछ फील करने पे मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ही एक गाने को आज हम शाउट आउट देने वाले हैं। गाने का नाम है तारे बाय फरक। इससे पहले कि मैं वो गाना चलाऊं, आई वांट यू टू थिंक समथिंग। सोचो एक परिंदा पिंजरे में इतने दिन रह रहा है कि जब दरवाजा खुला तो उड़ना ही भूल गया। जिंदगी भर जिस आसमान को देखता रहा, अब जब वो आसमान उसके सामने है, उसे डर लगने लगा कि अभी आगे कैसे जाना है, पहला कदम कैसे लेना है। एंड एक्चुअली ये परिंदे की बात ही नहीं है, ये हम सब हैं। हम सब के अंदर कहीं ना कहीं, टू बी ऑनेस्ट, एक चुल होती है ना, एक छोटा सा कीड़ा छुपा बैठा है। कुछ तो करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। कोई लिखना चाहता है, कोई गाना चाहता है, किसी के अंदर कोई कलाकार, फिल्म, पेंटिंग, कोई आइडिया जिसका बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। पर हमने क्या किया, उसको लेके सारी विशेस को एक अलमारी के अंदर डाल दिया कि चलो पहले जिंदगी बना लेते हैं फिर सोचेंगे। अब वो अलमारी बंद ही रह गई और वो सपना अंदर ही रह गया। लेकिन मान लो एक दिन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, वो जो सारी विशेज हैं वो पूरी हो गई, अलमारी खुल गई, सपना बाहर आ गया, जो परमिशन चाहिए थी वो मिल गई, जो पैसा चाहिए था, वक्त चाहिए था, वो आपके सामने है, आसमान दिख रहा है खुला सामने। तो फिर सोचने वाली बात है कि क्या मैं और आप एकदम उड़ जाएंगे या उस दरवाजे को देखते ही रहेंगे और डर जाएंगे उस परिंदे की तरह, जो अब इतना यूज्ड टू हो गया है अपनी सिचुएशन से, अपने सर्कमस्टेंसेस से, कि आज़ादी कैसी लगती है वो भूल ही चुका है। इसका कोई सही जवाब नहीं है और आपको मुझे तो बिल्कुल नहीं बताना है, पर सोचने वाली बात है। और यही सोचते सोचते अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। ये गाना बिल्कुल आपको उसी कश्मकश में लाके खड़ा करेगा। पहचान छोड़ दी जीरो से दोबारा शुरू करने वालों के लिए। आर्टिस्ट का नाम है फरक, गाने का नाम है तारे। It's playing right next for you on Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.

लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया

0: यार ये गाना ऐसी फील्स को हिट करता है जो जेन्युइनली मैंने छुपा दी थी अपने अंदर। गाने का नाम है तारे बाय फरक, साथ में उनकी आवाज है शाश्वत बलान की। अभी सिर्फ सुनना नहीं है, ठीक है, अपने अंदर के उस छुपे हुए आर्टिस्ट को निकालो। @RJKanika इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ दैट जो भी आप जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, वट एवर यू डू, अगर आपको आपकी विश पूरी करने का एक चांस मिल जाए तो क्या करोगे, क्या है वो अंदर की चिल। @RJKanika इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। हर्ष नसी की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है साडी सुन। द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव, पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप होके साडी सुन इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 9। उसके बाद एक नई नवेली एंट्री, गाने का नाम आरजू बाय नूर खान एंड मधुर एक्सो। आरजू ने डेब्यू किया है दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: Number 9 How chup

0: Ana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Murga, murga. Nafis wala murga. Mirchi murga.
3: Hello.
4: Hello.
3: Hello.
4: Hello, Ben ji.
3: हाँ जी.
4: ये एक सेकंड. ये बहन जी, हम आपके पड़ोस में रहते हैं. ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है. वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है. अगर
3: आप, आपके घर में कोई नहीं है थे?
4: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं. तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो. एक सेकंड बेटी, चुप.
3: आप अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए जल्दी.
4: नहीं नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ. एक सेकंड. आली है मामा आएंगी, मामा आएंगी. एक सेकंड बहन जी, आप होल्ड करेंगी? एक सेकंड सर. आएंगी मामा, आएंगी, चीजी लाएंगी बेटो, चीजी लाएंगी. नहीं, चुप हो रहा. आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे.
3: नहीं, इसमें डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है.
4: एक सेकंड, इधर आओ. हाँ, इधर आओ. देखो, मामा आ गई, चीजी लाई. हाँ, डायपर गीला है बहन जी उसका.
3: उतार लीजिए उसको.
4: एक सेकंड रुकिए. ये इसके गले में अटक रहा है डायपर. एक सेकंड.
3: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका.
4: अच्छा, ये बेब है. एक सेकंड,
3: डायपर देखिए, सुसु करा होगा उसने. अच्छा, देखिए.
4: हाँ, सुसु ही करा. चल,
3: उतार दीजिए.
4: एक सेकंड. उतार दिया. मैं जी, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ आए जरा.
3: देखो
4: आंटी कर रही है. क्लैपिंग करो.
3: चुप हो जाओ, पेट दर्द वगैरह ना हो, आप इसको डॉक्टर के पास लेकर जाइए.
4: हाँ, मुझे भी वही याद आ रहा है. नहीं बहन जी, आप सही कह रही हैं. रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था, जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया.
3: और मैं पागल हूँ. ओह नो.
4: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं.
7: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC. Stay tuned with Mirchi. The mentalist Suhani Shah, live in

0: एशकिंग की आवाज में। गाने का नाम है किनिया सोनी, पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले संजू राठौड़ की आवाज में हमने सुना बैंगल्स, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello, hello, स्वागत है आपका। This is Gaana Indie Top 10। बंदी का नाम है RJ Kanika। Connect with me Instagram पर जाओ, कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। It's time for a Gaana Spotlight of the Week। And आज मैं जिस आर्टिस्ट से आपको मिलवाना चाहती हूँ, ट्रस्ट मी, इनके गाने को सुनने के बाद आप ये सवाल पूछोगे कि यार कनिका, इससे पहले क्यों नहीं रिकमेंड किया। आर्टिस्ट का नाम है खोसला रघु। इस नाम में दो आर्टिस्ट हैं, ऋषभ रघुवंशी एंड संचित खोसला। टुगेदर दे मेक खोसला रघु। इनकी स्टोरी इज स्टफ ऑफ ड्रीम्स। ये दो दोस्त हैं, बोर्डिंग स्कूल में साथ में पढ़ते थे। एंड आपने भी अपने दोस्त से कभी तो कहा होगा कि यार साथ में कुछ शुरू करते हैं, साथ में म्यूजिक करते हैं, साथ में ये करते हैं, और कहीं ना कहीं वो रह जाता है कुछ लोगों का। पर संचित एंड ऋषभ एज आर्टिस्ट, हम सबका वो सपना जी रहे हैं, एंड दे आर सो गुड एट व्हाट दे डू। कोई बहुत बड़ी बैकिंग के साथ उन्होंने शुरू नहीं किया, काफी ऑनेस्ट सॉन्ग राइटिंग एंड देयर ability to connect with their audience. गानों में आपको full contemporary pop, classical, heavy vocals, everything that makes us feel like ये कौन से वाला गाना है, वो सारे elements मिलेंगे। It sounds very new and modern, yet rooted in Hindustani classical. I remember many conversations with both of them, and वो कभी भी trends के पीछे भागते ही नहीं है। They just make the songs जो उन्हें पसंद हैं, and उनके कई सारे गाने Instagram पर already trend कर चुके हैं। So yes, they are trendsetters. जो गाना आज हम स्पॉटलाइट करने वाले हैं, उस गाने का नाम है बेवजह। ये उस पहले वाले प्यार की बात है जो धीरे से ना आपकी पूरी दुनिया पे टेक ओवर कर लेता है। उनकी राइटिंग, म्यूजिक बहुत ऑनेस्ट है। अगर आप इंस्टाग्राम पे इन दोनों को देखेंगे तो जिस तरह से वो म्यूजिक बनाने के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, वो भी बहुत ऑनेस्ट है। आई स्वेयर मैंने कोई ऐसे आर्टिस्ट नहीं देखे जो अपने फैंस के साथ ये तक शेयर करते हैं कि इस गाने को बनाने के पैसे कितने लगे, इसका हमने कितना कमाया, अगर आप ये शुरू करोगे तो ये गलती मत करना। That's how you build loyal listeners. And Khosla Raghu, Gaana Indie Top 10 ki taraf se super mad respect to you guys. Apne radio sets ki volume badha lijiye. Gaane ka naam hai Bewajah. Khosla Raghu ki nayi album ka pehla gaana. It's playing right next for you only on Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.

2000 रघु का नया नवेला गाना, गाने का नाम है बेवजह, फीलिंग्स हैं बिल्कुल की दिल है जो मानता नहीं। एट आरजे करेगा ऑन इंस्टाग्राम पर जाओ, कोई गाना आर्टिस्ट जिन्हें आप स्पॉटलाइट देना चाहते हो मेरे साथ आके शेयर करो। वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ बैक टू द काउंटडाउन। अगले वाला गाना इज अनीश सरकार, हृदय का उड़ी उड़ी। 8 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, उड़ी उड़ी इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय। नंबर 5।

0: ना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
3: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची 1 इट्स हॉट।
6: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
7: तो सिर्फ चोरे करें।
8: हमारी चोरियाँ चोरों से कम है के?
2: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
0: FM मिर्ची 1 इट्स हॉट।
5: गाना इंडी टॉप 10
0: कनिका के साथ ऑन मिर्ची।

0: दिलजीत दोसांझ की आवाज, गाने का नाम है डीलर। 19 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होकर डीलर इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाएं, मेरा हैंडल इज @RJKanika। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

And the song we're going to feature this week is... गाने का नाम है तेरे मेरे साथ और आर्टिस्ट का नाम बता देती हूँ पर बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती बिकॉज लकी अली की आवाज ऐसी है कि पहले सेकंड में हम पहचान जाते हैं कि ओ ऑफ कोर्स दिस इज लकी अली। अब मेरा काम तो गाने के बारे में बात करना, गाने सुनाने का है, लेकिन कभी कभी जब सड़कों पे निकलती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, उनसे उनके रिएक्शंस जानने की कोशिश करती हूँ अबाउट दीज लेजेंडरी आर्टिस्ट, तब समझ में आता है दैट लकी अली जैसे आर्टिस्ट ने पॉप म्यूजिक के लिए कितना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया है। उन्होंने इतने बड़े हिंदी फिल्मों के लिए गाने किए हैं जैसे एक पल का जीना, अनजाना अनजानी में उनका गाना था, पर जितने लोगों से बात करो उनका नाम सुनते ही सब उन्हें एक पॉप स्टार बोलते हैं। उनके अपने पॉप सॉन्ग्स, वो खुली सड़क, वो गिटार, वो लाल गाड़ी, धूप में लकी अली गाने गा रहे हैं, और ये किसी फिल्म के गाने नहीं है, ये उनकी अपनी एल्बम के गाने हैं। दैट्स जस्ट द मैजिक दैट दिस मैन हैज। आप कभी इनका लाइव परफॉर्मेंस अटेंड करें, क्राउड कमाल की होती है, आपको 70 साल के लोग भी मिलेंगे और 20 साल के लोग भी। इंटरनेट पर जो उनकी क्लिप्स हैं, उनके गानों के वीडियोस हैं, उनके कमेंट्स के नीचे हर उम्र के लोग मिलेंगे और एक ही जैसी बातें करेंगे। वन ऑफ दोज रेयर आर्टिस्ट जो सारी जनरेशंस के फासले मिटा रहे हैं। और जो ये वाला गाना है तेरे मेरे साथ, अक्स एल्बम का गाना है, इसका वीडियो क्यूबा में शूट हुआ था। धूप, खुली सड़क, एकदम फ्री फीलिंग। गाना सुन के आप बहुत हल्का हल्का फील करोगे और सनी फील करोगे। इट्स वेरी सनशाइन वाला सॉन्ग, टॉक्स अबाउट कनेक्शन बिटवीन टू पीपल, कि जब सारा जग सोता है। ये गाना उस अजीब से खास से कनेक्शन की बात करता है जो वर्ड्स में बोलना मुश्किल है, तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लो। लगी अली की आवाज में दिस इज तेरे मेरे साथ प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन कैसेट क्लासिक। पत्नी का नाम है आरजे कनिका। एंजॉय।

0: अगर सनशाइन इमोजी एक गाना होता ना तो लकी अली का दिस सॉन्ग वुड बी इट बिकॉज वाओ हाउ डू यू डू दिस लकी अली की आवाज में. दिस वॉज तेरे मेरे साथ ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक एट आरजे कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर जल्दी आओ. 90s 2000s का वो जो भी गाना है जिसको सुन के आज भी आप बड़े खुश हो जाते हो ना कि यार इस गाने में ही बात थी, वही वाला गाना जानना है मुझे एट आरजे कनिका पर आके हमारे साथ शेयर करो. मैं और अश्का हम दोनों आपकी सारी सजेशंस को बहुत सीरियसली लेते हैं. वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की तरफ बढ़ते हैं. आदित्य रिखारी रावट और कुटले खां का गाना, गाने का नाम ए अजनबी. 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार ए अजनबी इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इन द टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: Number 3.

0: टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25 सितंबर एट QNCC। स्टे ट्यून्ड विद मिर्ची, द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: Ana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi.
1: Mirchi sun rahe hain aap, bandi ka naam hai RJ Kanika, show ka naam hai Gaana Indie Top 10. Ye wo show hai jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री थी. हमने अपने 90s 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने को शाउट आउट दिया. गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर पूरा कर चुके हैं. नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, एक क्विक रीकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप. ज़ारा खान का गाना मूव बॉडी दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद हर्ष नुसी का साडी सुन दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. नूर खान एंड मधुर एक्सो के आरजू ने इस हफ्ते डेब्यू किया ऑन गाना नंबर 8. देन संजू राठौर का बैंगल्स ऑन गाना नंबर 7. एश किंग का किनिया सोनी 4 हफ्तों से स्ट्रॉन्ग दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी 8 हफ्तों से स्ट्रॉन्ग ऑन द काउंटडाउन दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. दिलजीत दोसांझ का डीलर इज द मोस्ट सीनियर सिटीजन सॉन्ग ऑफ द काउंटडाउन 19 हफ्तों से बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 4. 15 हफ्तों से डटा हुआ ये गाना आदित्य रिखारी रेवटों कुटले खा का गाना अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग कॉल्ड ए अजनबी दिस वीक ऑन गाना नंबर 3. एंड द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, कोई रीशफल नहीं हुआ है, ये दोनों गाने इन पोजीशंस पर डटे हुए हैं 18 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. बंजारे द आर्टिस्ट का गाना, गाने का नाम है बैरन, पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार बैरन दिस वीक ऑन गाना नंबर 2. एंड द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, मिट्टा रॉर की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है शीशा. 18 हफ्तों से ये गाना भी डटा हुआ है, शीशा दिस वीक ऑन गाना नंबर 1. दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय. नंबर 2.

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: क्या बताओ यार, कंपनी इतनी टॉक्सिक हो गई है मेरी, टीम से सब लोग एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं, अब मैं अकेला ही बच गया हूँ, क्या करूँ?
2: अरे मामू, तो तू छोड़ देना तो कंपनी से क्या टॉक्सिसिटी चली जाएगी।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: मिलने लगे, जैसे कि जश्न बहारा, गुजारिश, अर्जियां। एंड यस, ऐसे ही लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स हम सबकी जिंदगी में आते रहे।
1: मिर्ची कैफे,
0: मैं हूं आपके साथ पारुल। शो शुरू हो गया है मिर्ची कैफे। वेलकम वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। ये गाना आपने सुना कैफे पर, आज का पहला गाना। तो ऐसे ही भाई, लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स कभी कभी छीनने पड़ते हैं, कभी कभी खटखटा के खुद आ जाते हैं। डिपेंड्स ऑन हाउ लकी यू आर। बाय द वे, अगला गाना जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वो सुनकर आप जरूर लकी फील करोगे, क्योंकि यू नो सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में एक गाना है फ्रॉम द ईयर 2008। दिस हैज अ वेरी ब्यूटीफुल वाइब। और आपको पता है, अर्ली 2000s में ये बड़ा फैशन था कि जितने भी हिंदी गाने चल रहे हैं उनके साथ कुछ ना कुछ एक ऐसा इंग्लिश फ्रेज या इंग्लिश लाइन एक जरूर आनी चाहिए। वो ऐसे हम मिलेनियल्स उससे ऑब्सेस्ड हो जाते थे, और आई थिंक अभी तक है। आई एम श्योर यू गोइंग टू लव इट। और ये जो गाइडिंग लाइट वाली बेबी को बुला रहे हैं ना, ये भी मैं ही हूँ समझ लो, क्योंकि अच्छे म्यूजिक सेंस के लिए भी थोड़ी गाइडेंस चाहिए ना, जो मैं इधर मिर्ची कैफे पे आपके लिए लेकर आई हूँ। वेल, इस दिन को और खूबसूरत बनाते हैं इस गाने के साथ। यही हूँ मैं आपके साथ, अभी दो घंटा रहने वाली हूँ। जस्ट स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची कैफे। अपने हाथ में अपना चाय, कॉफी, व्हाटएवर यू वांट टू हैव, उसका कप उठा लीजिए और सिप करते करते ये गाना सुनिए बड़े मजेदार तरीके से। एंड इफ यू आर ड्राइविंग, थोड़ी सी आवाज बढ़ा लो यार, मजा आएगा ये सुन के। मिर्ची कैफे शुरू हो गया है मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

आपको पता है जावेद अली ने इस गाने के बारे में क्या कहा? द सिंगर जिन्होंने ये गाना गाया है, उन्होंने बोला कि ये जो गाना था ना, वो उनका टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज करियर था, क्योंकि एक दिन तेरी राहों में के बाद से उन्हें गाने

0: Este Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. ¡Cabana! ¡Murga, murga! ¡La fiesta la murga!
0: ¡Mirchi, murga! ¡Murga!
2: हेलो
3: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
2: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
3: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे वो उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
2: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
3: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
2: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
3: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
2: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
3: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
2: कौन कौन आ सकते, किसकी जिप्सी?
3: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
2: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
3: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
2: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
3: आगे वो भी आगे हैं, आगे वो भी आगे। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
2: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
3: आगे वो भी आगे, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो, जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आप ऊपर ला रहा हूँ,
2: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
3: किसकी डेथ हो गई सर?
2: मेरे भाई की डेथ हो गई।
3: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स का फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
2: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसे हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
3: मैं कहाँ रहा हूँ,
2: सॉरी आप अभी कहाँ रहो?
3: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
2: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, इस परेशान हूँ मैं।
3: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
2: यार।
3: थैंक यू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
5: इट पकड़।
6: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
7: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
8: हिट गाने
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM Mirchi 1.
11: Mirchi 1. It's hot.
12: The mentalist Suhani Shah.

0: 1996 कायरो इजिप्ट के पिरामिड्स के बीच की एक कहानी जो कि किसी का पास्ट लाइफ हार्ट ब्रेक दिखा रही है। अमेजिंग वाली लकी अली की आवाज। और आपको पता है ये गाने के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट बताऊंगी अभी।
1: मिर्ची कैफे,
0: आप सुन रहे हैं मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। एंड यू माइट नॉट नो कि जब ये गाना आया था, आई वाज टॉकिंग अभी 96 में, तो सबसे ज्यादा हम तब गाना सुना करते थे एमटीवी पर, ओके। और उस टाइम पे ना एमटीवी एशिया चार्ट्स करके ऐसे चार्टबस्टर गानों का एक वो होता था प्लेटफॉर्म जो बताता था कि इतने दिन तक ये गाना उस पर रहा। 60 वीक्स तक ये गाना MTV एशिया चार्ट्स पर रहा था। कैन यू बिलीव इट? थैंक्स टू लकी अली फॉर मेकिंग सच सॉन्ग्स, जो हमारे दिल में अभी तक रहते हैं और हमेशा रहेंगे। बाय द वे, रहने से मुझे याद आया कि कुछ लोग होते हैं जो अपना कंट्री छोड़कर फॉर ग्रोथ, फॉर जॉब पर्पसेस, फॉर व्हाटएवर, अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं और फिर शुरू में तो ऐसे फेस्टिवल्स पे आते हैं, साल दो साल में एक बार आते हैं, और फिर कुछ लोग होते हैं जो वहीं बस जाते हैं एंड दे डोंट वांट टू कम बैक। मेरी ना एक फ्रेंड है, उसका भाई और उसकी भाभी दे गॉट मैरिड और 2-3 साल बाद दे सेटल्ड इन द US। वो वहां गए और जैसे कि मैं भी कह रही थी कि 1-2 साल में 1-2 बार आए वो, बट पिछले 4 सालों से राखी पे, दिवाली पे वो अपने भाई का वेट करती है। ऑफकोर्स शी इज इन टॉकिंग टर्म्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बातचीत ही बंद हो गई है, बट वो उसके दिल में ना एक ऐसी होप रहती है डिस्पाइट ऑफ ऑल द लॉजिक्स जो उसको पता चलते हैं कि वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं एंड ऑल दैट। बट एक होता ना कि एक होप होती है दिल में, उसको हमेशा लगता है कि अगर ये होता तो हम ये सब करते। कभी कभी ना ऐसे जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो डिस्टेंस की वजह से काफी ट्विस्ट हो जाते हैं और दिल में एक टीस किसी ना किसी के रह जाती है, चाहे वो सिबलिंग हो। पर कभी कभी ना हमको सच में किसी अपने का ऐसा इंतजार फील होता है ना जो शायद सामने वाला नहीं समझ पाता, बट जो भी ये समझ पा रहा है जो मैं कह रही हूँ, ये गाना सुनो। कुछ गाने ऐसे नहीं होते जो बनाए जाते हैं बिलवड के लिए, बट आपको फील होता है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में आप उसको सुनोगे ना वो वहां पर भी फिट बैठ रहे हैं। आई लव दिस सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म रॉक ऑन, फरहान अख्तर की आवाज में। सुनो इसको ओनली ऑन मिर्ची कैफे। मैं हूँ आपके साथ पारुल, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं।
3: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC. Stay tuned with Mirchi.
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: 2004 जब ये फिल्म आई थी लक्ष्य, आप यकीन नहीं करेंगे उसका कितना ज्यादा इम्पैक्ट था लोगों की लाइफ्स पर।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। आपको पता है अपार्ट फ्रॉम उदित नारायण और अलका याग्निक की ब्यूटीफुल आवाजें, ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा का इतना क्यूट सा वीडियो एंड द फिल्म, आपको पता है इस पिक्चर के रिलीज के 15 साल बाद फरहान अख्तर, हुज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, वो गए थे मिलिट्री एकेडमी में जो कि देहरादून में है, ओके, वेरी फेमस वन। वहां पे लक्ष्य के रिलीज के 15 साल बाद जाने पर फरहान अख्तर को उस एकेडमी के 70% स्टूडेंट्स ने ये बोला है लेजिट कि उन्होंने लक्ष्य देखकर ये डिसाइड किया था कि वो आर्मी में जाएंगे। कैन यू बिलीव इट? और ये सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, आई नो फॉर अ फैक्ट कि जब ये फिल्म आई थी तो मेरे आसपास के यू नो स्पेशली बॉयज को इतनी जोर की दिल में लगी थी ये फिल्म कि जो भी लक्ष्य लेस थे ना लाइफ में, उन्होंने कुछ ना कुछ करने की पक्का से ठान ली थी। यार फरहान अख्तर, वेयर आर यू? प्लीज मेक मोर फिल्म्स। दिल चाहता है लक्ष्य, आई एम क्रेविंग फॉर मोर सच फिल्म्स, प्लीज बनाइए ना। Well, अगर आपका दिल क्रेव कर रहा है एक ऐसे गाने को सुनने का जो यू नो मैं टाइम मशीन से जाकर आपके लिए लेकर आती हूँ, हियर इज माई नेक्स्ट सॉन्ग। 1999 से मैं आपके लिए निकाल के लाई हूँ ये गाना आज। डू यू रिमेम्बर रिंकी खन्ना? डू यू इवन नो, आई नो जेंजीज वुड नॉट नो, अक्षय कुमार की वाइफ ट्विंकल खन्ना, ऑफ कोर्स उनकी सबसे छोटी बहन रिंकी खन्ना आल्सो फीचर्ड इन दिस फिल्म कॉल्ड प्यार में कभी कभी, जिससे मैं ये गाना आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको पता है विशाल शेखर का कॉम्बो है ना, सो शेखर का ये पहला गाना था विच ही कंपोज्ड एंड सैंग, और ये उन्होंने एक्चुअली अपनी बिलावड के लिए लिखा था उस वक्त। इट्स सच अ स्वीट सॉन्ग। इस ये जो फिल्म थी इसमें संजय सूरी, रीनो मोरिया एंड रिंकी खन्ना थे, एंड एज फार एज आई रिमेम्बर मुझे बड़ी क्यूट लगी थी ये फिल्म जब मैंने देखी थी। तो आज मेरे खजाने में से निकाल के आपके लिए ये गाना, इट्स अ ब्यूटिफुल ट्रैक इन द वॉइसेज ऑफ महालक्ष्मी अय्यर एंड शेखर, प्लीज इसको सुनो। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC। स्टे ट्यून्ड विद मिर्ची द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: हाय
1: दिल तो पागल है 1997 आनंद बख्शी के लिरिक्स, लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज, कौन नहीं जानता इस गाने को यार, भोली सी सूरत द लेजेंड सॉन्ग।
2: मिर्ची कैफे
1: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और यू नो, मुझे सबसे मजेदार बात लिरिक्स की और म्यूजिक की क्या लगती है, आप एकदम ऐसे एक्सट्रीम चीजें लिरिक्स और म्यूजिक को कंपोज करके परोस सकते हैं फॉर द ऑडियंसेस। तो अभी आपने सुना जो गाना, इट इज टू यू नो एक्सप्रेस द ब्यूटी ऑफ द बिलवड, कि यार दूर खड़े होके इतनी प्यारी सी सूरत है इस लड़की की और ये शर्मा रही है, कितनी प्यारी लग रही है। और जो इससे बेहद प्यार करता है वो कह रहा है कि यू नो मेरी नजर से तुम उसे देखो, तुम्हें नजर आएगी। एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि अगला गाना जो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ उसके लिरिक्स क्या हैं। मैंने ये गाना रिसेंटली सुना और मुझे लगा कि मुझे ये गाना आप सबको, टू माई फ्रेंड्स, जरूर सुनाना चाहिए। यू नो सिर्फ सुन के देखना है। बैठी है मौन सजा के, एड़ी पे जंग लगा के, एक लड़की है जो बैठी हुई है साइलेंस को अडॉर्न करके, मौन सजा के चुपचाप बैठी हुई है, और इतनी स्टैग्नेशन या एंडलेसली वेटिंग वाली जिंदगी है उस लड़की की कि वो तब से बैठी है इंतजार में और इसके पैरों में एड़ी में जंग लग चुका है, लोहे पे लग जाता ना जंग। एल्बम है सॉन्ग्स ऑफ ट्रांस, 2020 का ईपी है ये। अमित त्रिवेदी, अमिताभ भट्टाचार्य ने कंपोज किया है, लिखा है, शैली के लिरिक्स हैं, शर्मिष्ठा चैटर्जी की माइंड ब्लोइंग आवाज है। सो दिस सॉन्ग विल डेफिनेटली गिव यू गूज बम्स। इस गाने को सुनो, और अगर आपने ये पहली बार सुना है आज मेरे शो पर, प्लीज मुझे लिखना, 7045983983 इज माई व्हाट्सएप नंबर, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ढूंढ सकते हैं paruls.world के नाम से, वहां पर भी मुझे बताओ कि आपको ये गाना सुन के कैसा लगा, आपको आए कि नहीं आए गूज़बम्स। जस्ट लिसन टू दिस ट्रैक, मिर्ची कैफे पर मैं हूं आपके साथ पारुल, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: मैं बोल रही थी ना आपको, इतने एक्सट्रीम इमोशंस को एक साथ एक्सपीरियंस करने का काम सिर्फ गाने कर सकते हैं, सिर्फ म्यूजिक कर सकता है. एक तरफ आपने सुना भोली सी सूरत और एक तरफ आपने सुना बैठी है. एंड यू नो व्हाट, ये जो गाना है बैठी है, सो वन ऑफ माय फ्रेंड्स, शी रिसेंटली लॉस्ट हर मदर, और उसने मुझे ये तब भेजा गाना जब यू नो शी गॉट आउट ऑफ द ग्रीफ. थोड़ा वक्त हो गया था आंटी को गुजरे, और मैं सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जिस दिन उसने मुझे बताया ना कि आंटी का काफ़ी बार से कॉल आई जा रहा था उसको कि बात कर लो बेटा, शी लिव्स इन अ डिफरेंट सिटी एंड ऑल दैट. और तीसरी कॉल के बाद जब उसने कहा था कि मम्मा, शी वॉज ऑल वेल, ऐसा भी नहीं कि वो बीमार थी, तो तीसरी कॉल के बाद जब उसने कहा कि मम्मा आई एम वेरी वेरी कॉट अप, मैं बहुत बिजी हूँ, शाम को आपसे बात करूँगी प्लीज़, फिर वो शाम नहीं आई कभी उसकी ज़िंदगी में. तो प्लीज़ यार, जब भी मैं ये गाना सुनती हूँ ना, मुझे गूज बम्स के साथ साथ आंखों में आंसू भी आ जाते हैं. तो प्लीज़ कोशिश करना यार कि जब जो तुम्हारा प्यारा इंसान तुमसे बात करना चाह रहा है, चाहे तुम कितने भी बिजी हो, टेक दैट मोमेंट आउट टू एटलीस्ट स्पीक फॉर अ व्हाइल. बहुत अनप्रेडिक्टेबल लाइफ है यार ये, तो सब मिलके खुश रहते हैं यार, कोशिश तो करते हैं एटलीस्ट. आ रही हूँ छोटे से ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून टू मिर्ची. मैं हूँ आपके साथ पारुल, इट्स हॉट.
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन.
2: या मिर्ची हेल्पलाइन, बताओ क्या प्रॉब्लम है?
1: जब भी मैं मॉल में शॉपिंग करने जाता हूँ, एक चीज लेनी होती है, पांच लेके आ जाता हूँ, क्या करूँ?
2: ये तो गलत है, अगली बार से एक ही लाना, क्योंकि पांच लेकर पकड़े जाओगे तो मॉल वाले चोर समझकर मारेंगे.

0: 2002 का ये गाना यार क्या वाइब थी ना उस वक्त. सारे ऐसे एल्बम सॉन्ग्स आते थे इंडी पॉप और हम लोगों को इतना मजा आता था. सारे वीडियोस बैठ के हम टीवी पे देखा करते थे और बहुत ही यू नो इंटरेस्टिंग वीडियोस भी आया करते थे उस वक्त पे. मजा अलग था यार. इंटरेस्टिंग सीरियल्स, इंटरेस्टिंग वीडियोस, एल्बम्स. 2002 एंड दोज इयर्स वर अ वाइब फॉर श्योर.
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप. मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ ओनली ऑन मिर्ची. और अगला गाना भी यू नो उसी जॉनरा से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और. बट इसके बारे में एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट बताऊंगी जो कि मुझे भी रिसेंटली पता चला. सो दीवाना एल्बम, हाँ, ऑल इन ऑल सोनू निगम का एल्बम और अमेजिंग वीडियोज अगेन एंड बहुत ही बढ़िया बेहतरीन. हम सब ने बहुत सुना कैसेट्स में रिकॉर्ड करा करा के. लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि दीवाना तेरा जो गाना है वो बेसिकली साजिद वाजिद जो कंपोजर्स थे बेसिकली वाजिद खान का एज अ सिंगर लॉन्च होने वाला था विद द सॉन्ग दीवाना. मतलब आपको पता है कि दीवाना एल्बम के साथ सोनू निगम जुड़े हैं बाद में. तो बेसिकली दीवाना एल्बम के गाने साजिद वाजिद ने कंपोज किए थे और वाजिद को वो लोग लॉन्च करने वाले थे. बट यू नो सोनू के कुछ गाने तब तक हिट हो चुके थे एंड दे वांटेड इंस्टेड कि सोनू शुड अपीयर एज अ सिंगर ऑन दैट एल्बम. और इस तरीके से द क्लासिक कल्ट एल्बम दीवाना सोनू निगम के नाम हुआ. अमेजिंग ना. ऐसी चीजें लाइफ में होती रहती है. हम बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले, ऐसी मोमेंट्स आ जाते हैं अचानक से जो लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स कहलाते हैं बाद में. सुनो इस गाने को, अगला लेकर आई हूँ आपके लिए सोनू निगम दीवाना तेरा. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची कैफे. मैं हूँ आपके साथ पारुल. इट्स हॉट.

0: Nici.
1: Iscabana, uscabana, sacabana, rabana, burga, burga. La vieta la burga. Nici, burga.
2: Hello?
3: Hello, Mr. Gotham.
2: कौन बोल रहे हैं?
3: सर, मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. मैं आप सुना है वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं.
2: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं.
3: पहले मोहल्ले में मैंने स्नेक निकला था, तो स्नेक कहीं घुस गया था, तो मेरे को पोले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको, मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. सर नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने? हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर. वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
2: अरे काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके और मैं एड्रेस देता हूँ, उसको भेज दो.
3: वही सर, है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
2: कौन से गाने
3: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए. मैं एक पेशकश कर रहा हूँ. तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बताए बांसुरिया. सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे कहाँ खाएगा.
2: सुन ले बात सुन पहले बात सुन. और बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
3: सर. बोलिए,
2: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
3: जी सर.
2: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
4: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ. मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका.

0: वेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट फोर बॉल्स लेफ्ट दे नीड 12 रन्स टू विन।
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
3: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कारपेट?
4: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC. Stay tuned with Mirchi. The mentalist Suhani Shah live.

0: If you come to think of it, what a beautiful thought na, मजरू सुल्तानपुरी साहब ने जो ये लिखा है, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, कितनी सिंपल सी रिलेटेबल बात को बस उल्टा करके उन्होंने इस तरीके से पोर्ट्रे किया, विच यू नो ट्रांसलेट्स इनटू कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए, मैं बस आज खुश हूँ।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। दिस फिल्म खामोशी द म्यूजिकल, व्हाट अ फिल्म, व्हाट परफॉर्मेंसेस, व्हाट सॉन्ग्स, मतलब ये पूरे अपने आप में ना एक खामोशी द म्यूजिकल पीडिया है। सो इट इज अमेजिंग। अगर आपने नहीं देखी है इस फिल्म को, जरूर से देखिए। और ये जो फीलिंग होती है ना, खुशी वाली, आज मैं ऊपर वाली, बहुत सारी चीजें आपको दे सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फेवरेट टीम फुटबॉल या क्रिकेट जीत जाए, आपका फेवरेट प्लेयर बढ़िया सिक्सेस मार के 100 रन बना ले या 50 बना ले, या फिर यू नो आप घर पे पहुंचे और आपके पसंद का खाना मिल जाए, या फिर एक वो फीलिंग होती है ना कि आपके पापा ने कभी शायद खुद के लिए कुछ नहीं खरीदा। आई थिंक ऑल द डैड्स आर द सेम इन दिस मैटर। कभी खुद कुछ नई चीज खरीद के खुश नहीं होते हैं। आप दिला भी देंगे, व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग तब भी वो खुश नहीं होंगे, क्यों पैसे खर्चता है। सो जब उनको आप इतना अच्छा कमाने लग जाएं कि उनकी पसंद, उनकी ख्वाहिशें उनके बिना बोले आप पूरी कर सकें, उनकी खुशी और आपको जो खुशी मिलेगी वो करके, यू नो दोस काइंड ऑफ खुशियां गिव मी मिलियन गूज बम्स। तो अगर आप वैसी खुशी अभी तक देने के बारे में सोच रहे हो, एंड यू अर्निंग वेल, और आप ऐसा मे बी यू नो इट हैज स्लिप्ड योर माइंड, जरूर से ऐसा करो अपने डैड्स के लिए। यू नो वो शायद आपको डांट देंगे, ऊपर से फटकार देंगे कि क्या है, हट, पता नहीं क्यों पैसे खर्च करता है, पर जो अंदर से उनको खुशी मिलेगी ना, यू कांट मैच दैट खुशी। ऐसा ही एक अनमैचेबल गाना, अच्छी हैप्पी फीलिंग वाला आपके लिए लेकर आई हूँ, फ्रॉम द फिल्म लगान। किसी का कोई डर नहीं होना चाहिए लाइफ में, ठीक है। सुनो इस गाने को। एंड हाँ, बिफोर यू गो आपको एक अमेजिंग बात बताती हूँ इस गाने के बारे में। तो AR रहमान सर की कॉम्पोजिशन है ये सारे फिल्म के गाने लगान के। और आपको पता है, एक रिसेंट इंटरव्यू में मैंने देखा कि जावेद अख्तर साहब जब इस गाने के लिरिक्स लिख रहे थे तो उन्होंने कुछ लिखा, लेकिन AR रहमान सर ने विदाउट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदी प्रीटी मच उन्होंने सजेस्ट किया कि नहीं, कोई एक शब्द इस गाने में ऐसा आना चाहिए जो रेपिटेटिव हो, जो यू नो एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट सेट कर दे इस गाने का। एंड ऑन हिज रिकमेंडेशन ये वर्ड एड हुआ इस गाने में जावेद अख्तर साहब के द्वारा, विच वॉज यू नो लेटर द टाइटल ऑफ दिस सॉन्ग कॉल्ड मितवा। सो या सच स्टोरीज ऑल्सो गिव मी हैप्पीनेस। सुनो इस गाने को, मिलती हूँ आपसे ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची कैफे, मेरा नाम है पारुल। स्टे ट्यून्ड इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: माधुरी जी, आप अपने ग्रेस, एलिगेंस, पॉइज, अदा, इन सब के लिए जानी जाती हैं। असली में माधुरी दीक्षित कौन है?
3: The elegance and this and that, everything inside is me is like a mad person. And I love mad comedies. And I love these kind of situations which are like larger than life. वो कुछ अजीब सा हो रहा है इनके साथ, अजीब से कैरेक्टर्स हैं सब, you know, सब पागल, unhinged kind of characters.
2: अब समझी, इसीलिए लोग प्यार से आपको मैड्स भी बुलाते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल। और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
6: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स,
1: जबरदस्त ट्रैक्स।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: इस गाने को सुनूं और मेरी आंखें नम ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। उस्ताद राशिद खान साहब की आवाज में एक गाना है, जब वी मेट से है, हम सब जानते हैं द सिचुएशन, दैट फिल्म, यार एवरीथिंग अबाउट दैट फिल्म एंड द सॉन्ग्स वाज आल्सो कल्ट। कुछ चीजें ऐसी बन जाती है ना जो उसके बाद वैसा कुछ नहीं हो सकता, चाहे कितना भी आप कह लो कि तमाशा वगैरह वगैरह बहुत अच्छी फिल्में हैं, बट आई डोंट थिंक जब वी मेट जैसी कोई भी फिल्म है इम्तियाज अली की। आई बिलीव इन दैट फैक्ट। आपको बताए एक और मजेदार फन फैक्ट बताती हूँ। तो बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं जो पर्टिकुलरली उस फिल्म के लिए नहीं बने होते हैं ओरिजिनली, बट फिर वो उस फिल्म का हिस्सा बन जाते हैं ग्रेजुअली। ये भी उनमें से एक गाना है। तो आओगे जब तुम नहीं बना था इस फिल्म के लिए, बट जब इम्तियाज अली ने सुना, उनको लगा कि भाई बैंग ऑन, आई नीड दिस। ऐसे और बहुत सारे गाने हैं, जैसे कलयुग का आपको आदत याद है, ऑफ कोर्स वो उस पिक्चर के लिए नहीं बनाया गया था। उड़ता पंजाब का एक कुड़ी, That lyrical poetry, gum hai, that was not supposed to be in Udta Punjab, but then it became. Aise bahut saare gaane aap dhoondoge to aapko milenge. So yes, this was a fun fact from my side. Agla gaana jo aapke liye lekar aayi hoon, Mohit Chauhan aur Shreya Ghoshal ki awaaz mein, ye bhi ek behad khoobsurat gaana hai from the film called Kismat Connection. Yaad hai aapko, Shahid Kapoor, Vidya Balan. And this song has a magical feeling. So, I'll see you in a short break. Stay tuned to Mirchi, it's hot.
2: Kiss.

गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानिशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC। स्टे ट्यून्ड विद मिर्ची, द मेंटलिस्ट सुहानिशा।

0: दिल चाहता है शंकर महादेवन की आवाज में ये ब्यूटीफुल फिल्म, ये ब्यूटीफुल सॉन्ग, कौन नहीं जानता इसको।
1: मिर्ची कैफे,
0: आप सुन रहे हैं मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। लेकिन जो आप बात नहीं जानते वो मैं आपको बताती हूँ। अलग अलग एज ग्रुप्स की या अलग अलग डेकेड्स की अलग अलग दोस्तियाँ होती हैं। पहली होती है स्कूल वाली दोस्ती, जिसमें हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई इम्प्रेस नहीं करना किसी को, दोस्त पेन फाइट्स, एक दूसरे के सामान निकाल रहे हैं, खाने खा रहे हैं, और ये भी नहीं सोच रहे हैं कि पता नहीं हम कितने लंबे टाइम तक साथ रहेंगे या नहीं। नो टेंशन, सिर्फ होमवर्क टेंशन। 20s की जो दोस्ती होती है वो होती है मौज मस्ती, देर रात तक की बातें, बहुत सारी दोस्तियां जो रिलेशनशिप में बदल जाती हैं। 30s में आते आते बहुत कम दोस्त बचते हैं, लेकिन हाँ, जो चुनिंदा दोस्त बचते हैं वो आपके खुद के अपने होते हैं। यू नो, यू रियलाइज हो सकते हैं रोज मिलना भी नहीं हो रहा हो, लेकिन हाँ, जब मिल रहे हैं तब बढ़िया मिल रहे हैं, बातें हो रही हैं। फिर आती है 40s की दोस्ती, बिना किसी फेक दिखावे वाली, जहाँ रोज बात नहीं हो रही है, रोज मिल नहीं रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स देन द डेप्थ ऑफ कॉन्वर्सेशंस एंड शेयरिंग दोज सीक्रेट्स, जो शायद आप परिवार को नहीं बता रहे हैं लेकिन उन दोस्तों को बता रहे हैं। फिर आती है 50s वाली दोस्ती, 60s, 70s, 80s, यू नो, फिर वो होते हैं कि हम पुराने वक्त याद कर रहे हैं, अपने बच्चों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एंड दवाइयां डिस्कस कर रहे हैं, प्रोबेबली ये डिस्कस कर रहे हैं कि तू काले बालों में कैसी लगती थी या लगता था। अलग अलग फेजेस और डेकेड्स की अलग अलग दोस्ती, लेकिन सबसे प्यारी बात अबाउट एनी दोस्ती इज दोस्त हम खुद चूज करते हैं, नहीं, और चाहे जैसे भी हो, जो असली होते हैं ना, दे आर ऑलवेज स्टैंडिंग बिहाइंड योर बैक। और अगर कोई आपको असली दोस्त नहीं मिला है, तो आप बन जाओ ना किसी के दोस्त, ट्राई तो करके देखो यार। ये गाना KK की आवाज में, टू ऑल द ब्यूटिफुल फ्रेंड्स आउट देयर। क्रिंज हरकत लग सकती है आपको, या हो सकता है आपका थोड़ा ऑरा कम हो जाए, लेकिन कभी कभी ना दोस्त को ऐसे ही बहुत दिन से बात नहीं की हो तो फोन करके बोल दिया कर कि भाई मिस कर रहा है यार तुझे, अच्छा लगेगा उसको। विद दिस लेट मी से अ टाटा टू यू। मुझे भी आप मैसेज करके बोल सकते हो कि अब आप मुझे मिस करोगे, क्योंकि अब मैं अगले एपिसोड में मिलूंगी ना आपसे। इंस्टाग्राम पे आप मुझे ढूंढ सकते हो parul.world के नाम से, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7045983983। बनो ना यार मेरे दोस्त भी, प्लीज मुझे बताओ आप कौन सा गाना सुनना चाहते हो अगले एपिसोड में, मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी। और इस एपिसोड में आपको कौन सा गाना अच्छा लगा, कौन सा नहीं लगा, एनी फीडबैक, एनी कॉन्वर्सेशन दैट यू वॉन्ट टू हैव विथ मी, ब्रिंग इट ऑन मैन। और सुनते रहो मिर्ची, मैं मिलूंगी आपसे थोड़े वक्त बाद। अपना ख्याल रखो, बहुत सारी मस्ती करो, एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

कोई भी चारा ना था। लेकिन मुझे मजेदार बात यह लगती है कि जिसे भुलाने की आप कोशिश करेंगे ना, उसे भूलना उतना ही कठिन होता जाएगा। फिराक गोरखपुरी साहब का शेर है कि एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। तो दोस्त, ये तो समझ आ गया है कि जवाब ढूंढने जाओ तो और सवाल ही मिलते हैं। बहरहाल, मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपके ताशी आपके साथ, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: इस्तकबाल ख्वातीनों हजरात, मिर्ची की इस महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और जिंदगी में याद रखना जितना जरूरी है दोस्त, मुझे ये पता चला कि उतना ही जरूरी होता है भूल जाना। अदीम हाशमी साहब का शेर है बड़ा खूबसूरत कि याद करके और भी तकलीफ होती थी अदीम, याद करके और भी तकलीफ होती थी अदीम, भूल जाने के सिवा।

0: Mirchi, it's hot. Mirchi. Iskra bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Burka, burka. La fiat bala burka.
1: Mirchi burka.
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये?
2: समाचार
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
2: कौन बोल रहे हैं?
3: मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
3: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात से
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3
2: ऐसे करता हूं।
3: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी।
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद के कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी शिवानी शिवानी मेरी बात सुनो, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन करना, शिवानी मेरी बात सुनो, शिवानी मेरी बात सुनो,
2: नहीं
3: नहीं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: कुकड़ू
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू।
1: कि आप कताशी आपको रूबरू कराए आज एक ऐसे शायर से जो एक बहुत ही फेमस शायर के बड़े करीबी हैं लेकिन लाइमलाइट में नहीं है। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं सलमान अख्तर साहब की। अब आखिरी नाम से आप समझ गए होंगे, अख्तर तो बिल्कुल जी जावेद अख्तर जी के भाई हैं और लखनऊ में इनका जन्म हुआ 31 जुलाई 1946 में और अभी ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहते हैं। और इनका एक बड़ा ही खूबसूरत शेर जो मेरे जहन को बड़ा प्यारा लगा, मैंने पढ़ा हाल में और आपके नजर करूंगा। कहते हैं कि एक वही शख्स मुझको याद रहा, एक वही शख्स मुझको याद रहा जिसको समझा था भूल जाऊंगा। वाह जी वाह, क्या बात है। और जिंदगी में कई बार ऐसी होता है कि आप किसी से अपना इमोशनल कनेक्ट स्टैब्लिश कर लेते हैं और उसके बाद वो शख्स कभी आपके जहन से उतरता नहीं है। एक और शेर सुनाऊं आपको सलमान अख्तर साहब का जो मुझे बड़ा पसंद आया। लिखते हैं कि झूठी उम्मीद की उंगली को पकड़ना छोड़ो। वाह, झूठी उम्मीद की उंगली को पकड़ना छोड़ो, दर्द से बात करो, दर्द से लड़ना छोड़ो। आए हाय हाय हाय हाय, क्या मतलब, एकदम साइकोलॉजिकली परफेक्ट बात कह दी है। क्योंकि आपके थेरेपिस्ट भी आपसे यही कहते हैं कि रीअप्रेज करो अपने इमोशंस को, उन्हें रिप्रेस मत करो। झूठी उम्मीद की उंगली को पकड़ना छोड़ो, दर्द से बात करो, दर्द से लड़ना छोड़ो। बेहतरीन राइटर और खून में है यार इनके तो। बहरहाल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ एंड यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: Mirchi. It's hot.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
3: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC. Stay tuned with Mirchi. The mentalist Suhani Shah live.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी करता है आपको आदाब अर्ज। और दोस्त जफर इकबाल साहब का एक शेर है जो मेरे जहन में घूम रहा है बड़े अरसे से। और शेर जब सच्चा होता है ना तो उसको याद करना नहीं पड़ता, वो याद हो जाता है। और ये शेर मेरी जिंदगी में कुछ उसी मकाम पे है। जफर इकबाल साहब लिखते हैं कि यहां किसी को भी कुछ हस्बे आरज़ू न मिला। हस्बे आरज़ू मतलब जैसा मांगा था, एग्जैक्ट सेम टू सेम। यहां किसी को भी कुछ हस्बे आरज़ू न मिला, किसी को हम न मिले और हमको तू न मिला। कितनी सिंपल, कितनी सटीक बात है। और यही तो सिंपल सटीक बातें जो होती है ना, वो आपको याद नहीं करनी पड़ती हैं, वो आपका दिमाग खुद ग्रैस्प करके रख लेता है कहीं ना कहीं। और ये शेर मेरी जिंदगी में तो उसी मकाम पे है। बहरहाल अगर आपका भी ऐसा कोई पसंदीदा शेर हो तो आप मुझे भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। बातचीत करने भी आ सकते हो। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
2: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
3: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
4: खूब मिलेगा, मिलेगा।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: It's always such a pleasure when we've got artists at our show. क्योंकि बड़ा ही दिल को सुकून मिलता है, बड़ा ही दिल को एक खुशी मिलती है जब कोई भी कलाकार जिसने कोई नगमा गाया हो, बनाया हो, उसका हाथ लगा हो, उसका गला लगा हो, उसका दिमाग लगा हो, वो शो पर आता है और उसके बारे में बात करता है. हमारे साथ आज विपिन अनेजा जी हैं और विपिन अनेजा जी ने अभी हाल में मूवी आई थी मैं वापस आऊंगा, उसमें गाना गाया तेरे पास में, और दैट सॉन्ग बिकेम वेरी वायरल, बहुत ज्यादा हिट हुआ वो गाना. उन्हीं से बातचीत चल रही है, देखिए.
3: हेलो, हाय विपिन, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप?
4: थैंक यू ताशी फॉर हैविंग मी. मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं वापस आ गया हूँ.
3: अरे जिंदाबाद. द प्लेजर इज ऑल माइन बाई टू हैव यू ऑन द शो. रहमान साहब के साथ काम करके व्हाट वॉज द एक्सपीरियंस लाइक?
4: So Tashi, I have been associated with Rehman Saab, आज 20 साल हो चुके हैं. हम सब एक मुख्तलिफ साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं और मुझे ऐसा लगता था कि काश रहमान भाई एक मेरी आवाज के लिए गाना बनाए, और उसके बाद में तेरे पास में पे हम आ गए और उनकी कॉल आई, और उस एक्सपीरियंस को मैं शब्दों में कैसे ही बयां करूं कि जब मैंने वो कॉम्पोजिशन सुनी, उसकी दो वर्जन्स थी जो मैंने रिकॉर्ड करी चेन्नई में, जिसमें से ये वाली वर्जन अप्रूव हुई, और फिर उसके लगभग मैंने 3 से 4 डिफरेंट लिरिक्स भी मैंने मुंबई में गाए. तो एक पूरा एक्सपीरियंस ऐसे था जैसे कि एक आप तराशते हैं जब किसी मूर्ति को, और जब तक वो परफेक्शन उसका चेहरा एकदम शाइन करता है तब जाकर के रहमान भाई उसे सिलेक्ट करते हैं. अब समझ में आता है कि when preparation meets the opportunity and when your right time comes, और वो सही समय पर एक सही चीज आती है और उसको इस तरीके से तराशा जाता है, और वो भी द जीनियस रहमान साहब, इरशाद कामिल एंड इम्तियाज अली साथ के साथ में, तो इसका रिजल्ट ये होता है, तेरे पास में बन जाता है.
1: हाँ जी बिल्कुल, तेरे पास में बन जाता है. दैट वॉज मिस्टर विपिन अनेजा, द सिंगर ऑफ तेरे पास में, एंड वी आर प्लेइंग हिज सॉन्ग ऑफकोर्स. मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी आपके साथ, एंड दिस इज तेरे पास में, इट्स हॉट.

0: Mirchi, it's hot.
1: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
0: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
2: बार बार
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन स्टेशन
3: 89.6
0: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ वेलकमिंग यू टू द शो अगेन इफ यू जस्ट जॉइंड अस। और दोस्त मोहब्बत भी ना बड़ी अजीब चीज होती है क्योंकि आप किसी से लड़ाई भी कर सकते हो लेकिन उस लड़ाई के दौरान भी आप उनसे प्यार में होते हो, मतलब यू लव देम बट यू आर फाइटिंग विद देम, समझ रहे हो। और लड़ाइयां हर रिलेशनशिप में होती हैं। एक बड़ा सटीक शेर मुझे मिला इस पे बासिर सुल्तान काजमी साहब का, और लिख जो गए हैं दोस्त एकदम जिंदगी का सच लिख गए हैं। कहते हैं कि गिला भी तुझ

बहुत है मगर मोहब्बत भी, गिला भी तुझसे बहुत है मगर मोहब्बत भी, वो बात अपनी जगह है, ये बात अपनी जगह। वाह जी वाह, ये हुआ ना कंपार्टमेंटलाइज करना। ओफो, गिला भी तुझसे बहुत है मगर मोहब्बत भी, वो बात अपनी जगह है, ये बात अपनी जगह। और जिंदगी में ऐसा होता ही है यार, रिलेशनशिप्स आर कॉम्प्लिकेटेड। वो जो फेसबुक में नहीं लिखा रहता था कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड, जो एक ऑप्शन होता था सिंगल और मिंगल्ड के अलावा वाला, एग्जैक्टली रिलेशनशिप्स आर जस्ट लाइक दैट। लेकिन हमारी रिलेशनशिप बड़ी सिंपल है यार। मैं आपको बढ़िया बढ़िया नगमे गजलें सुनाऊंगा और आप करिए मुझसे बातचीत मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप।

0: Mirchi, it's hot.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
3: आई थिंक ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट। आई थिंक अ फ्लाइंग कार्पेट,
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये,
2: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC. Stay tuned with Mirchi. The mentalist Suhani Shah.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे किस्सा कॉर्नर।
1: कि आप कताशी करे आज का किस्सा आपके नजर, और आज का किस्सा आ रहा है लखनऊ से। लखनऊ को कहा जाता है अदब का शहर, और ज्यादातर लोग जब ये सुनते हैं तो उनके जहन में नवाब आते हैं और यू नो महफिलें आती हैं। लेकिन अदब की जो बात है वो ये है कि लखनऊ अदब का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जो जनरल पब्लिक थी उसने अदब को इख्तियार किया था, उसने अदब को संभाल के रखा, उसे फॉलो किया था। जैसे मक्खन का एक किस्सा आता है लखनऊ से निकल के कि मक्खन बेचने का ये वक्त कहा जाता है कि जब सावन लग जाए, जब दिन बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाए दिन में, तो मक्खन का वक्त नहीं होता है। तो हुआ क्या कि एक साहब थे जो कि मक्खन का ही धंधा करते थे। अब वो मक्खन बेचने तो लाए, लेकिन दिन में जो तपिश थी, दिन में जो गर्मी थी वो बढ़ गई, और उन्हें ये बात बेईमानी लगी कि वो ऐसे मौसम में, क्योंकि उन्होंने अपने बड़ों से सीखा था कि वो ऐसे मौसम में मक्खन बेचें, तो उन्होंने बेचा नहीं, वो वहां के जो गली मोहल्ले के जो बच्चे थे वो उनमें अपना मक्खन बस बांट गए। और एग्जैक्टली यही वो पॉइंट है कि जो नॉर्मल पब्लिक है, जो रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए लोग हैं, उन्होंने अदब को संभाल के रखा, इसलिए लखनऊ को अदब का शहर कहा जाता है। आज के वक्त में वो बात कितनी सच है, दैट इज ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू डिबेट। लेकिन आपका ताशी है आपके साथ, मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, इट्स हॉट।

0: on Mirchi. It's hot.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ और बहुत लोग का ये नजरिया है कि यार उर्दू और ऐसी जो लैंग्वेजेस हैं इन पे खतरा मंडरा रहा है कहीं एक्सटिंक्ट ना हो जाए लेकिन मैं थोड़ा ना एक पॉजिटिव नजरिया रखता हूँ एक थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक लगता हूँ और मुझे लगता है कि यंग राइटर्स इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं ना कि मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है उर्दू हिंदी को। और जैसे मैं आपको काम दिखाऊं चंद्रशेखर पांडे शम्स जी का है ना क्या उम्दा गजल है कि क्या अंधेरा है क्या उजाला है क्या अंधेरा है क्या उजाला है ये नजरिए का बस हवाला है रोज सूरज शहर में घर आए शाम को रोज घर निकाला है कौन खोलेगा दिल का वो कमरा नाम का तेरे जिस पे ताला है। क्या बात है यार कितनी मतलब पढ़ के मजा आ गया एंड ही इज वन ऑफ दोज न्यू एज शायर्स जो कि बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और जिनकी वजह से मुझे लगता है कि भाई फ्यूचर तो मतलब सेफ है हमारा है ना। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल बने रहे अपने ताशी के साथ यू नो व्हाट आई से इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Bollywood Bol Dal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bol Dal. Only on Mirchi, it's hot.
1: Amit Trivedi, studio hai, guitar hai, mahol hai. Rukein kis liye hain aap?
2: होने दो बत्तियां सीने में दिल सॉरी वन मोर टेक प्लीज
1: टेक एज मेनी टेक्स एज यू वांट अमित त्रिवेदी हम तो सुनते रहेंगे मिर्ची इट्स हॉट
0: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
3: नहीं बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना
4: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है
5: कैसे रुक सकता है
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन इट्स हॉट

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे डायरी से
1: कि आपका ताशी पलटे अपनी डायरी के सफे और कर दे आपके नजर। और जिंदगी में ना कई बार ऐसा होता है कि आपके पास बैंडविड्थ नहीं होती किसी और के दुख किसी और के एक्साइटमेंट के पल में शामिल होने की। हाँ यार, कई बार ऐसा होता है कि आपकी जिंदगी में इतना कुछ चल रहा होता है ना, आपका खुद का वक्त इतना मुश्किल चल रहा होता है या फिर इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं कि आप सही मायने में किसी सामने वाले को वो रिस्पॉन्स या फिर वो एनर्जी दे ही नहीं पाते जिसकी वो एक्सपेक्टेशन लगा के आपके पास आते हैं। साहिर लुधियानवी साहब का एक बड़ा बेहतरीन शेर है इस पे, कहते हैं कि हम गम जदा हैं लाए कहां से खुशी के गीत, हम गम जदा हैं लाए कहां से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम। कितनी प्यारी बात कह दी है दोस्त, मतलब वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स मेरे ख्याल से। और अंग्रेजी की एक कहावत भी है कि यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। इसीलिए सेल्फ लव, खुद से प्यार करना, खुद को वक्त देना, खुद के इमोशंस को प्रोसेस करना बड़ा जरूरी होता है इस जिंदगी में, क्योंकि यार अगर तुम ही नहीं खुश होगे तो खुशियां बांटोगे कैसे। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, बने रहे अपने ताशी के साथ, यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: क्या बताओ यार, कंपनी इतनी टॉक्सिक हो गई है मेरी, टीम से सब लोग एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं, अब मैं अकेला ही बच गया हूँ, क्या करूँ?
1: अरे मामू, तो तू छोड़ देना तो कंपनी से क्या टॉक्सिसिटी चली जाएगी।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और जिंदगी में ना बोलता हर कोई है कि यार बात करनी चाहिए, कभी अपने इमोशंस दबाने नहीं चाहिए, शेयर करना चाहिए सबके साथ। लेकिन मुझे लगता है कि सोसाइटली ये कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है या फिर बहुत टाइम मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप किसी को अपने दिल के अंदर की बात बता नहीं सकते यार। लोग ना बहुत जल्दी पर्सपेक्टिव्स बना लेते हैं, लोग आपके बारे में कोई इमेज बनाना चाहते हैं कई बार। और एक बड़ा सही शेर मुझे मिला, कहते हैं कि पता नहीं किसका शेर है, लेकिन कहते हैं कि किसी को कैसे बताएं जरूरतें अपनी, किसी को कैसे बताएं जरूरतें अपनी, मदद मिले ना मिले आबरू तो जाती है। क्या बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो तो कमी हो जाती है ना अगर आप किसी के सामने जाके बोलें कि यार बड़ी जरूरत है मुझे इस चीज की, क्योंकि वो मदद करे ना करे आपने बता दिया उसे, वो बोल देगा सॉरी यार मेरे पास भी अभी कुछ नहीं है, आप कहोगे अरे कोई नहीं यार सबका यही हाल चल रहा है ना, ऐसा करके और आप फिर बढ़ जाओगे आगे। मदद मिले ना मिले आबरू तो जाती है, किसी को कैसे बताएं जरूरतें अपनी, मदद मिले ना मिले आबरू तो जाती है। अहमद फराज साहब का भी एक बड़ा सटीक शेर है इसी मौजू पे, कहते हैं कि दुख फसाना नहीं कि तुमसे कहें, दिल भी माना नहीं कि तुमसे कहें, हर किसी से दिल की बात थोड़ी ना कही जाती है, मुझको अगर आप उस लायक समझें तो आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Nabiyat wala murga. Mirchi, murga.
3: हेलो
4: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
3: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
4: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
3: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
4: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
3: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
4: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
3: मैं तो बालकनी में खड़ा, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
4: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
3: कौन कौन आ सकते, किसकी जिप्सी?
4: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
3: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
4: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
3: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
4: आगे वो भी आगे हैं। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
3: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है वो, क्या मैं घर पे नहीं हूँ।
4: आगे वो भी आगे, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है, मैं आप पहला रहा हूँ।
3: मैं बाद में मिलूंगा आपसे, यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
4: किसकी डेथ हो गई सर?
3: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
4: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स का फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
3: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसे हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ पर रहे हो?
4: मैं कहाँ पर हूँ,
3: सॉरी आप अभी कहाँ पर हो?
4: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
3: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, परेशान हूँ मैं, हर साल का रिटर्न वेटर्न सब फाइल कर देता हूँ वो अभी।
4: आशीष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
3: यार।
4: थैंक यू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
6: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
7: दोनों मिलेगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
9: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे लव्स आजकल
1: कि आप कताशी लव्स आजकल में आपको आज एक कॉन्सेप्ट सिखाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, वो जो कहावत याद आती है मुझे कि गिव द मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच हिम हाउ टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर लाइफ। तो आज एक कॉन्सेप्ट बड़ा सरल सा जो मेरे जहन में आया कि आपको बताऊं। कॉन्सेप्ट संधि विच्छेद का, हमें हिंदी में सिखाया गया था संधि विच्छेद, मतलब एक लव्ज के जब आप दो टुकड़े करते हैं तब कई बार वो लव्ज आप पे खुल जाता है, आपको समझ आ जाता है कि वो लव्ज क्या है। अब जैसे अमीर मिनाई हमारे एक बड़े क्लासिकल शायर हैदराबाद के हुए, उनका मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा शुरुआत में, ठीक है। कौन सी जा है जहां जलवाए माशूक नहीं, कौन सी जा है जहां जलवाए माशूक नहीं, शौक दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। क्या बात है, अब बहुत बड़ा भी लगा, ऐसा लगा कि पता नहीं क्या कह गए, है ना। लेकिन चलिए संधि विच्छेद करते हैं, लेट्स स्प्लिट दीज वर्ड्स एंड सी व्हाट दे रियली मीन। कौन सी जा है, वो कौन सी जगह है जहां जलवाए माशूक नहीं। जलवाए माशूक को उठाओ, उसका संधि विच्छेद करो तो क्या है, जलवा ए माशूक। माशूक होता है लवर, है ना। जलवा तो हमें सब पता है, फैशन का है ये जलवा, एग्जैक्टली वो वाला जलवा। तो जलवा है माशूक, मतलब पहला मिसरा कह रहा है कि वो कौन सी जगह है जहां मेरे माशूक का जलवा नहीं है। दूसरा जो लाइन है, शौक दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। शौक दीदार एक बड़ा सा वर्ड लगता है, संधि विच्छेद करिए, शौक ए दीदार। दीदार मतलब दीदार हुआ, एग्जैक्टली वो गाने वाला दीदार, मतलब देख लिया उन्हें, है ना। और शौक तो हमें सबको पता है, तो अगर दीदार का आपको शौक है सच में तो आपको नजर पैदा करनी पड़ेगी, आपको वो नजरिया अपनाना पड़ेगा। अब देखिए कितना आसान हो गया यही शेर, कौन सी जा है जहां जलवाए माशूक नहीं, शौक दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। भाई साहब पर्सपेक्टिव चाहिए होता है ब्यूटी देखने के लिए, कितना सरल है ना। बस स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, ऐसी ही और मस्त मस्त बातों के लिए गजलें और नगमे तो साथ में बोनस है ही। आपका ताशी है आपके साथ, यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: Richie, it's hot.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
3: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC. Stay tuned with Mirchi.
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
7: आएंगे दीदी।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन।
11: इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपके ताशी है आपके साथ। और लिटरेचर किस तरीके से विजुअल हो सकता है। उर्दू अदब में एक नाम जो हमें उसका नजारा दिखाते हैं वो है गुलजार। अब आप गजल देखें, उनके कुछ शेर देखें। गजल से लिखते हैं कि हवा के सींग ना पकड़ो खदेड़ देती है, हवा के सींग ना पकड़ो खदेड़ देती है, जमीन से पेड़ों के टांके उधेड़ देती है, मैं चुप कराता हूं हर शब उमड़ती बारिश को, मैं चुप कराता हूं हर शब उमड़ती बारिश को, मगर ये रोज गई बात छेड़ देती है। और शेर देखें आपकी, जमीन सा दूसरा कोई सखी कहां होगा। अब सखी यहां वो वाली सखी नहीं है जो दोस्त सखी होते हैं, ये सखी है, ख के नीचे नुक्ता है जिसका मतलब होता है बड़ा दिल वाला, ठीक है। जमीन सा दूसरा कोई सखी कहां होगा, जरा सा बीज उठा ले तो पेड़ देती है। वाह जी वाह यार, ये है ना, देखो इमेजरी एकदम सामने चीजें दिखने लग जाती है जब वो गजल लिखते हैं कि हवा के सींग ना पकड़ो खदेड़ देती है, जमीन से पेड़ों के टाके उधेड़ देती है, मैं चुप कराता हूं हर शब उमड़ती बारिश को, उमड़ती बारिश है ना। कितने विजुअल मेटाफर्स इस्तेमाल करते हैं गुलजार साहब। बहरहाल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ, एंड यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: आलिया, आपकी मम्मी सोनी राजदान बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राजी के सेट पे वर यू नर्वस और एक्साइटेड टू वर्क अलोंग विद योर मॉम, व्हाट वाज द फीलिंग?
4: यू नो, आई वाज वेरी नर्वस क्योंकि पहले तो मम्मी भी है, बट नंबर वन फर्स्ट माय को एक्टर ऑन सेट, वो मेरी पहली को एक्टर है, पहली मम्मी नहीं बन सकती, तो मैं नर्वस थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो नर्वस है तो मैं ज्यादा नर्वस हूँ। अगर उनको लाइनें शायद नहीं आते हैं तो मैं कैसे कहूंगी कि उनको नहीं आ रहा है, तो आई वाज लाइक मुझे ऐसा लग रहा है मैं दो लोगों के लिए एक्टिंग कर रही हूँ। मैं जब वो पहली बार सेट पे आई, बट तब मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि वो एकदम बिंदास है, शी इज एक्चुअली एग्जैक्टली लाइक मी।
3: आलिया, वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं। चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
6: पर दीदी, आर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: जी, इट्स हॉट
1: और वक्त हो चला है मेरे जाने का।
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी था आपके साथ, बट इट्स टाइम फॉर मी टू गो। लेकिन जाने से पहले अपने दिल के करीब एक जो नगमा जो मैं रखता हूं आपके नजर करूंगा आज के ताशी अनप्लग्ड में, और ये नगमा है बावरा मन देखने चला एक सपना। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, जो सुधीर मिश्रा जी की डायरेक्टोरियल मूवी थी और स्वानंद किरकिरे जी की आवाज है, ओरिजिनली इसमें शांतनु मोहित्रा का म्यूजिक है एंड वन ऑफ माई फेवरेट्स। तो ज्यादा वक्त जाया करे बगैर बावरा मन देखने चला एक सपना।

हाँ, मजा आ जाता है कुछ नगमे गा कर ही। बहरहाल अगर और ऐसे नगमे आप सुनना चाहते हो तो आप आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHI TASHI पर। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, आपसे मुलाकात होगी हफ्ते के उस पार। ताशी कहता है तब तक के लिए अलविदा, इट्स हॉट।

पतली कमर।

इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप।

इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली।

0: It's hot. With Mirchi. Fresh Mal.
1: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारा पर।

0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या, क्या, क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है?
1: नहीं तो।
0: रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा, कैसा, कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: ए, ए, ए, क्या लगा रखा है ये सब? हाँ, क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।

हे शिवानी तू लगती है नानी, बनेगी कब रानी। हे हे शिवानी।

0: पके माड़ी के पात्र में दुख शर्करा युक्त करा कंद्रा उपचित भूषण पर प्रधान हो तो काकशेष्टा बकोना ध्यान अमर स्वान निद्रा अवश्य प्राप्त हो सकते हैं। नमस्कार।
1: मैंने दूरदर्शन में सुना है।